0: की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन

0: सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा।

0: श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना।

0: रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस, होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says, India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: म्यूजिकली योर सलाम नमस्ते सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग हैप्पी हैप्पी संडे एवरीवन और 8:40 हो गए सुबह के यानी कि संडे का तो दिन है लेकिन काफ़ी सारे मुंबईकर्स ऑलरेडी जब भी मैं स्टूडियोज आती हूँ स्पेशली वीकेंड पर तो ऐसा लगता है कि आपसे पहले कितने सारे जितने भी सिटीजन्स हैं मुंबई के वो बाहर आ जाते हैं फिटनेस के लिए अपना ध्यान रखते हैं या फिर कोई कहीं कुछ खा रहा होता है पी रहा होता है चाय पी रहे होते हैं लेकिन खान पान की बात से बहुत ही जरूरी बात हम शेयर करेंगे आज इस शो में और आगे भी क्या है खास उन बातों के बारे में जरूर चर्चा होगी। फिलहाल आप सभी को याद दिला दें कि आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल आप सभी के लिए

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और मेरा नाम है आरजे कंचन। शो जो इस वक्त चल रहा है हेलो मुंबई हैप्पी संडे। आप सभी को काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप शो को एंजॉय कर रहे हैं, अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होते हैं, और अच्छा लगता है कि जब आप अपनी प्रतिक्रिया भी अपनी साझा कर रहे होते हैं। सो जितने भी नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया। एफएम रेनबो सुनते रहे और यूं ही खुशियां बटोरते रहें।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है

0: म्यूजिकली योर्स सोच रहा है मुंबई। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि ठीक 9:30 बजे 9:30 मिनट पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, सुनना ना भूलें। और आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं एक जरूरी संदेश।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

सभी श्रोताओं को बता दें कि ठीक 9:30 बजे यानी कि 9:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, सुनना ना भूलें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की

0: शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर

मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भेषज रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालना।

0: संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

नमस्कार, सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। समय है हिंदी में मुख्य समाचारों का। देश में रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते 3 महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी की गई है। उद्योग सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूत यानी रिवाच ने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने श्री रिवाज को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर इसराइल में शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की उनकी घोषणा के लिए धन्यवाद दिया। खबरों में आगे है, अमरीकी सेना ने होमोर्ज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया है कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर है और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। खबरों के अंत में, जापान के काकामिगहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशी तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान

से आपको बता दें कि न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। और शो जो शुरू हो गया है उसका नाम है मस्त मुंबई होगी कौन सी खास बात, सुनते रहिएगा। और ये गाना भी आप सभी के लिए

आप सभी को बता दें कि आज 7 जून यानी कि जो संडे है, आज के दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में इसको मनाते हैं। और जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने ये चीज़ें की या ऐसी चीज़ें नहीं की तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं खान पान की, सेफ्टी की, सुरक्षा की, कैसे उनको खाना चाहिए, कई बार स्पेशली अगर गर्मियों की बात करें, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो जाता है उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे हम थोड़े से टिप्स एंड शेयर्स सजेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और जब भी हम बातें करते हैं फल या सब्जियों की, स्पेशली काफ़ी सारे इंसिडेंट्स भी कई बार हमें आते हैं, खास करके अगर हम बात करें कट फ्रूट्स, अगर हम देखते हैं बाहर उनके ऊपर अगर प्रॉपर केयर नहीं ली गई हो या नेट्स ना लगे हो या हाथ में ग्लव्स ना हो, तो जहाँ तक हो सके आप प्लीज़ उनसे दूर रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि वो पानी का सेवन जो करते हैं वो बहुत ही कंटामिनेटेड वाटर होता है, जिसकी वजह से वो जो पानी के छींटे भी मारे जाते हैं उन फ्रूट्स के ऊपर, कट फ्रूट्स के ऊपर स्पेशली, वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अच्छा, फल सब्ज़ी खरीद कर तो आप ले आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली, फिर चाहे आप आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो आप स्टोर से ऑर्डर कर लेते हैं, या अगर आप बाहर जाते हैं कहीं से भी लाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि उसको डायरेक्टली फ्रिज के अंदर स्टोर किया जाता है। जहाँ तक हो सके प्लीज़ पहले उसे धो लें, सुखा लें और अच्छे से धोएं। अच्छा, धोने का तरीका भी थोड़ा सा हम शेयर करेंगे कि इसको एकदम स्लोली ना करें, पानी का जो बहाव है उसको थोड़ा सा तेज़ रखिए, या फिर खुले पानी में उसको अच्छे से धोइए, सुखाइए और फिर रखिए। और कौन कौन से टिप्स एंड शेयर्स हम शेयर करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत ही ख़ास दिन है, आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसी मौके पर मैं आप सभी के साथ जुड़ी रहूँगी ठीक 11 बजे तक। वैसे अगला गाना आप सभी के लिए,

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर घर

वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी के साथ शेयर करेंगे, जो कि मैंने रिसर्च के अनुसार जो मैंने बेस्ट ऑफ कंटेंट लेने की कोशिश की है और आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की है, उस पर आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दें. जब भी हम फ्रिज में कोई चीज़ आइटम रखते हैं तो क्या होता है कि एक रूल को फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ फीफो रूल जिसको कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ पहले आपने रखी है उस चीज़ को याद से पहले ही उसको कंज्यूम करने की कोशिश करें, और हो सके तो मतलब ज़्यादा डीले ना करें कि अब भूल जाते. कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते चीज़ें रखकर, तो जहाँ तक हो सके जितना जल्दी आप उस चीज़ को यूज़ करें वो बेहतर होगा. कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि इंडक्शन का चूल्हा और जो गैस चूल्हा होता है उसमें फ़र्क क्या होता है. फर्क अगर आप देखें तो फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है. इनफैक्ट क्या होता है, इंडक्शन में ये होता है कि जो पोल्यूशन होता है या घर में धुआं जो होता है किचन के अंदर उसमें वो कम होता है, और सब्जियाँ और फल काटने के लिए जहाँ तक हो सके जो आप चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो स्टील का ही लेने, या फिर क्या होता है कई बार उसमें सुराख वाला जो होता है वो ना लें, उससे क्या होता है उसके अंदर जर्म्स जाने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, इसलिए स्टील का लें. और अगर वुड का लें तो अच्छी क्वालिटी का लें, उससे ज़्यादा सेफ रख सकते हैं हम अपने खाने को. और जहाँ तक हो सके जितने भी आप कोई अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को स्क्रब कर रहे हैं तो भी कई बार क्या होता है घस घस के साफ करना पड़ता है, क्योंकि कई बार मिट्टी होती है या कुछ भी केमिकल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें. और बहुत ही ज़्यादा अगर आपको लगता है

की संदेह हो रहा होता है, तो प्लीज़ उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये ना सोचें कि हमने ये ख़रीद लिया है तो अब इसे हमें खाना ही है। अच्छा, एक और लेडीज़ का एक कन्फ्यूजन होता है कि गुदा हुआ जो आटा होता है उसको कैसे रखें और कितने दिन तक रखें। तो जहाँ तक हो सके उसको या तो कोशिश करें कि उसी वक्त आप फ्रेश बनाएं, और अगर बाई चांस रह भी गया तो जितनी जल्दी हो सकता है विद इन 24 आवर्स प्लीज़ उसको यूज़ करके ख़त्म कर लें। ये छोटी छोटी बातें, वैसे ये एक सजेशन ही है, ये एक एडवाइस ना समझें, पर ये एक ट्रिक है, टिप्स है, जो अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और आगे भी कुछ टिप्स एंड हम ट्रिक शेयर करेंगे। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ भी चीज़ों को बॉयल करके एकदम से, या कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गर्म होती है उसको एकदम से नहीं रखा जा सकता है फ्रिज में, तो उसको ब्लास्ट फ्रीजिंग भी कहते हैं कि आप ठंडे पानी के अंदर उसको रखें तो वो एकदम से भी ठंडा हो जाता है। और भी क्या क्या चीज़ों को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप सभी के साथ जारी रहेंगी। स्टे ट्यून्ड।

जैसे कि बात हो रही थी कि गर्मियों के मौसम में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा खान पान का ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं कि दूध को बार बार क्यों गर्म करें, कई बार हमने देसी फैमिलीज़ में हमारे देखा है कि जब भी देखिए सुबह से लेकर शाम तक दूध को गर्म किया जाता है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। जब एक बार दूध को अच्छे से बॉयल कर लिया है, हो सके तो उसको ठंडा करके फिर फ्रिज में रख दीजिए, और जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और टेट्रा पैक भी अक्सर सेफ माना जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन कभी मंगाते हैं तो पहले कोशिश, जैसे कि मैंने कहा कि आप यू नो जितने भी कैंस या टेट्रा पैक्स होते हैं उनको ज़रूर एक बार अच्छे से धो लें, उसके बाद ही वो सील पैकेट को आप फ्रिज में स्टोर करें या फिर बाहर रख सकते हैं जब तक आपने उसको खोला ना हो। अच्छा, मसालों को कैसे स्टोर करें? कोशिश यही करनी चाहिए कि मसाले जो हैं गैस या चूल्हों से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि उससे उसमें नमी पैदा होने की संभावना होती है। इसलिए जहाँ तक हो सके उनको एयर टाइट में अच्छे से रखिए, और जो गीले मसाले होते हैं वो भी इतना बनाकर रखिए कि कुछ ही दिनों में आप उसको यूज़ करके एक बार फिर से

फ्रेश जो है मसाले आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ चीज़ें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आ गए, सो दिल से शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जितने भी लिसनर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगला गाना आप सभी के लिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: समय है हिंदी में मुख्य समाचारों का। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। यह निर्देश श्री शाह की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान किया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2024 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। खबरों में आगे है, रूस के अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए। गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोनजेस्को ने निवासियों से युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। खबरों के अंत में, रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा पोलैंड की माया चोलंस्का के साथ सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इसी के साथ हिंदी में मुख्य समाचार खत्म होते हैं। इसके साथ ही ठीक 11 बजे दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत होगा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। बने रहिए हमारे साथ।

0: 111
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। तेज धूप, बढ़ता तापमान, लू, डिहाइड्रेशन, थकान और पाचन संबंधी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती हैं। ऐसे समय में हमारे पारंपरिक ज्ञान और भारतीय जीवन शैली की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भारत के पारंपरिक पेय पदार्थ और स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से हमारे घरों में बनने वाले पेय पदार्थ जैसे आम पन्ना, सत्तू, बेल का शरबत, छाछ, जौ का पेय और नींबू पानी न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि गर्मी से राहत देने और स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशिष्ट विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
2: नमस्ते, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: हमारे साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा। आप एक जानी मानी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। स्वागत, नमस्कार रीना जी, आपका भी।
3: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं मोनी दीपा तालुकदार। आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से पोषण और इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं। आपका भी स्वागत, नमस्कार।
4: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: अपनी चर्चा शुरू करने से पहले क्यों ना हम सुन लें कि गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री ने 31 मई के मन की बात के कार्यक्रम में क्या कहा।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर

0: राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम प्रकाश की, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौसम में हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो समय समय पर गाइडलाइंस इशू करते हैं, उन्हें भी हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए बताइए, ये गाइडलाइंस क्या हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए?
2: बहुत सही कह रहे हैं आप, गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस समय जब गर्मी अत्यधिक है, जिसको चरम सीमा पे आप कहिए, इस समय गर्मी देश के विभिन्न भागों में है, और जैसा कि आगे आने वाला है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और पानी जो है बरसात भी कम होगी, तो हर विभाग जो है देश का उसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा, एक डिजास्टर अलर्ट जो है वो मोबाइल पे भी किया गया चेक। तो ये भी एक उस तरीके से है, और अभी 3-4 दिन पहले भी वो अलर्ट आया था जब गर्मी चरम सीमा पे थी। तो ये हर विभाग जो है सरकार का, इसको हर साल ही कुछ ना कुछ करते हैं, ये नई नई चीजें जो है इजाद की जा रही हैं जिससे कि लोग इसमें ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, और हर सरकारी अस्पताल में लू के चपेट में आने वाले लोगों के लिए या जो गर्मी से त्रासदी होती है उसमें कोई भी जो व्यक्ति अस्पताल में आता है तो उसका हम लोग यूजुअली रिपोर्ट भी करते हैं और उनको हम लोग देखते भी हैं कि कैसे इलाज करना है। तो ये सारे स्वास्थ्य विभागों में, सारे अस्पतालों में, डिस्पेंसरी में गर्मी से जिन जिन लोगों को दिक्कतें होने की संभावना होती है या दिक्कतें होती हैं उनके लिए कैसे उनका हमें मैनेज करना है, कैसे उनका उपचार करना है, ये सब दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और सबके लिए लागू है।
1: जी, ये तो आपने बताया कि जो आपके हॉस्पिटल्स में किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी हुई है गाइडलाइंस के तहत, लेकिन जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कैसे इस चीज को समझें कि कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें ध्यान रखना चाहिए, बाहर ना निकलें, या अगर लू लग जाए तो किस तरह से उसको सीरियसली लें, कब वो डॉक्टर के पास जाएं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है।
2: तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी जी, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर राज्य में भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या क्या कैसे सावधानी बरतनी है और क्या क्या सावधानी बरतें, ये भी काफी जारी किया हुआ है। और इसमें जैसा आपने कहा तो मैं श्रोताओं के लिए ये बताना चाहूंगा कि दोपहर में, भरी दोपहरी में नहीं जाएं, तो 12 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, जब धूप बिल्कुल चरम सीमा पे होती है, सूर्य हमारे सर पे होता है, उस समय गर्मी से में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ अत्यधिक काम है, बहुत जरूरी काम है, तो आप या तो सवेरे के समय कर लें या शाम के समय कर लें जब धूप इतनी तेज नहीं होती है। अगर बाहर निकलें तो छतरी लेके निकलें या गमछा या फिर कपड़ा रख करके निकल सकते हैं, गीला कपड़ा करके अपने सर पे डाल करके निकल सकते हैं, या साथ में पानी भी जरूर लेके निकलें। ये प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें मन की बात में कहा था, और ये बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकलें गर्मियों में, इस समय मई जून के महीने में कभी भी आप बाहर निकलें तो साथ में पानी की बोतल जरूर लेके निकलें। तो ये कई चीजें हैं और इस पे मेरे ख्याल से सब श्रोताओं को पता भी होना चाहिए। इसमें रहन सहन की भी बात है, तो अगर कई लोग जो है ना बड़े डार्क क्लोथ पहनते हैं तो हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, टाइट नहीं पहने। तो जो पहले जैसे कुर्ता पजामा लोग पहनते थे गर्मियों में, आप कई बार देखेंगे, तो ये ऐसे कपड़े पहनकर जाना बाहर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें गर्मी शरीर में बचती भी है और थोड़ी हवा से रहता है तो जो पसीना आता है वैपोरेट हो जाता है, जिससे शरीर को खुद ब खुद जो है ठंडक महसूस होती है। तो ये कई चीजें हैं जो हम लोगों को ट्रेडिशनल जो हम

0: करते रहे हैं और ये बार बार दिशा निर्देश जारी भी होते रहते हैं और मेरा मानना है श्रोताओं के इस पे अमल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और हम कार्यक्रम भी इसीलिए समय समय पर करते रहते हैं कि लोगों को बताया जाए, कहीं कोई चूक ना हो और इस कारण से कोई हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। जैसा आपने पानी का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो क्या जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये कभी कभी फेटल भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल, डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी फेटल हो सकता है, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और आप जैसे कई लोग हैं जिनको उम्र दराज लोग होते हैं, उनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं तो उसकी वजह से उन्हें पसीना नहीं आता है, तो अच्छा। पसीना आएगा और ज्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और पसीने में और कई तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं पानी पिए और तरल पदार्थों के साथ वाला पानी पिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा नींबू पानी पिए, तो नींबू की वजह से उसमें पोटेशियम सोडियम चीजें आती हैं, तो उससे तरल पदार्थ पानी में आपूर्ति होती है, सादे पानी से बेहतर माना जाता है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये चीजें ऐसी हैं कि आपको डिहाइड्रेशन, तो पानी और तरल पदार्थ से आप डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ वृद्ध लोग होते हैं जिनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं बीमारियों की वजह से, तो उनको पसीना नहीं आ पाता है, तो कई बार बिना पसीने के अभाव में भी आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसमें हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन होगा तभी जो है गर्मी का दुष्प्रभाव होता है, गर्मी के दुष्प्रभाव बिना डिहाइड्रेशन के स्वेटिंग जब नहीं होती या पसीना नहीं आ रहा होता है तब भी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत लगे, सर में भारीपन लगे, चक्कर लगे, बहुत ज्यादा पसीना आए, जो कि आपको लगे कि आप ठंडक में आ गए फिर भी पसीना आ रहा है, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि आपको गर्मी का आहत हो रहे हैं। कई बार क्रैम्प्स होने लगते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है, कई बार आप धूप में जाते हैं आंखों में जलन होने लगती है, तो ये सब चीजें जो नॉर्मली आपको नहीं होती है, और कोई भी नई चीज आपको गर्मी में लगती है तो आप ये मानिए ये गर्मी के या गर्म से ज्यादा तापमान के दुष्प्रभाव है।
1: जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, लेकिन हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम में। तो आपने नींबू पानी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे शीतल चीजों के बारे में हमें बताया इस कार्यक्रम में, मन की बात में जिक्र किया, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे, आपके पास भी फिर वापस आएंगे और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी रीना अरोड़ा जी कि एक आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हर मौसम में जब ऋतु चक्र की बात करते हैं और जैसे जैसे ग्रीष्म काल आता है या कोई दूसरा काल आता है तो हमारा जो रसोई है उसका मिजाज बदल जाता है, तो किस तरह से रसोई का लिंक जो है ये आयुर्वेद में ऋतुचर्या जिसको कहा गया है वो कैसे जुड़ता है आपस में?
2: जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है शालिनी जी। अक्सर क्या होता है जैसे ही ऋतु बदलती है हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आजकल बच्चों को भी बड़ों को भी चीजें समझ नहीं आती हैं, फुल एसी ऑन करके वो गर्मी में सोचते हैं वही मौसम है, वही चाउमीन, वही जंक फूड्स और वही स्पाइसी फूड्स वो सब खाते रहते हैं, जबकि बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मौसम के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर्स है तो हमारी डाइट भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमें मार्केट में भी सत्तू दिखने लगता है इस मौसम में, नींबू पानी दिखता है, बेल का शरबत दिखता है, आम पन्ने की बात करते हैं लोग, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लूज कपड़े डालने चाहिए, आयुर्वेद में भी एडवाइस है कि आप लाइट कलर्स के कपड़े डालिए, कॉटन डालिए, बिल्कुल सिंथेटिक कपड़े मत डालिए ताकि उसमें से हवा पास हो सके, और सिर पे पानी डालिए, चंदन का यूज कीजिए इन दिनों पे, सर्दियों में अगरू का लेप बताते हैं तो समर्स में बिल्कुल चंदन का लेप आप बॉडी पे कीजिए, सबको पता है चंदन बहुत ठंडा है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो ये सब चेंजेस और डाइट में जैसे कुष्मांड है, बहुत आजकल सीजन में जो चीजें आ रही हैं, पंपकिन जिसको बोलते हैं उसका सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, कूलिंग एजेंट है, घिया तोरी टंडे टाइप की सब परवल जो सब्जियां आ रही हैं ये भी बहुत कूलिंग है, वाटर बहुत ज्यादा है इनमें तो बॉडी में वाटर कम नहीं होता है, खीरा है एक्सेस में आ रहा है इस सीजन में,
1: सब्जियों में या फलों में पानी का कंटेंट ज्यादा हो उसको।
2: और एक और चीज मैंने देखी है, भिंडी बहुत ज्यादा आ रही है, अब लोग कहेंगे कि ये वाइबादी करती है, ऐसा नहीं है। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, और होता क्या है धीरे धीरे इतनी गर्मी से कफ बॉडी में कम होता जाता है, ये कफ खांसी वाला कफ नहीं है, ये कई अच्छी चीजों वाला कफ है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है, बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करता है, तो उनको बढ़ाने में ये जो सीजनल वेजिटेबल्स आजकल जैसे भिंडी आ रही है, अरबी आ रही है, तो अगर किसी को सूट करती है तो उनको ये खाना चाहिए ताकि आपकी वो इम्यूनिटी, आपका इनहेरेंट जो हेल्थ हमारी होती है ना, ओज जिसको बोलते हैं, बोलते किसी को देख के हम कहते हैं बहुत ओजस्वी व्यक्ति है, तो वो आपका मेंटेन रहना चाहिए, अगर आपकी वो बेसिक स्ट्रेंथ मेंटेन है तो आपको कोई हीट स्ट्रोक अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने देखा

0: आजकल बच्चे भी कहीं ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, वो भी एक कारण है, खाली गर्मी कारण नहीं है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, आप चल पड़े ऑफिस के लिए इतनी गर्मी में, तो खाली पानी से गुजारा नहीं होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्वेटिंग हो रही है आपको, तो ये बेसिक चीजें भी अगर हम मेंटेन करें तो काफी हद तक इस गर्मी से हम बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और बचना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो ये कार्यक्रम है उसमें कुछ और भी हम चीजें शामिल करते हैं, मनोरंजन को भी स्थान देते हैं, तो एक प्यारा सा गीत चाहूंगी कि श्रोताओं के नाम आप सुनाएं, हम सब बैठ के सुनेंगे, आनंद लेंगे। कौन सा गीत जहन में आ रहा है जो आप सुनना चाहेंगे इस समय?
0: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
1: अरे और ये क्यों पसंद है आपको गीत?
0: आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सबको, सुसाइडल रेट भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो ये गीत अगर सबने सुन लिया तो इतना तो समझ आ जाएगा कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, खाली सोशल साइट्स को देख के आप अफेक्ट ना हो, जो आपके पास है, आपको जो सोशल साइट्स पे दिख रहा है शायद उससे ज्यादा है, वो दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स आपको, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं है अंदर, तो आप इस चीज को, इस गाने को अपना मतलब करियर में, लाइफ में, हर जगह एक सामने लिख लीजिए कि कोई भी किसी को मुकम्मल जहां मिला नहीं हुआ वो शो कर रहे हैं सोशल साइट्स पे, डोंट बी अफेक्टेड बाय देम, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और गर्मी से बचिए।
1: चलिए हम भी खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, प्यारा सा गीत सुनते हैं और बहुत ही खूबसूरत संदेश भी इसमें छुपा है, उसको भी हम समझते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मैं हूं शारणी मित्तल और कार्यक्रम में हम कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत अभी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए देश के अलग अलग कोनों से 10 पारंपरिक देसी ड्रिंक्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई ब्रांडिंग तो नहीं है, लेकिन इनमें हमारी पीढ़ियों का अनुभव छिपा है। तो मैं जानना चाहूंगी मोनी दीपा जी आपसे कि पोषण की दृष्टि से इनका क्या महत्व है। अगर हम जानना चाहें कि उत्तर भारत का, उन्होंने बात की है आमपना, पंजाब हरियाणा की लस्सी और गुजरात राजस्थान की छाछ, ये ड्रिंक्स हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में कैसे मदद करती है, बताइए।
1: जी, प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन में कि पानी पीते रहिए, और साथ में उन्होंने हमें 10-12 भारतीय पेय पदार्थों का एक सूची दी है जो हमें एक अंदाजा देती है कि हम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स को कैसे शामिल कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। और इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, ये कोई टोटका नहीं है या ये केवल एक अंदाजे की बात नहीं है। ये हमारी नानी दादी के नुस्खों में पारंपरिक रूप से लिखा हुआ है, प्रमाणित है और उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा है। उत्तर भारत में क्योंकि लू बहुत अत्यधिक पड़ती है और आम का वेजिटेशन वहाँ ज्योग्राफिकली होता है, इसीलिए कच्चे आम को उत्तर भारत में आम पन्ना के रूप में गर्मियों में खाने का एक कल्चर कस्टम रहा है। आम में एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो गर्मियों में हमारे पेट को, एसिडिटी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम है, इसमें पेक्टिन है, कच्चे आम में पेक्टिन रहता है जो एक किस्म का सॉल्यूबल फाइबर है। सॉल्यूबल फाइबर हमारे स्टमक की लाइनिंग को टोन करता है, उसको सूद करता है। तो गर्मियों में जो अपच की समस्या रहती है और जो उसमें इन्फ्लेमेशन, जलन या एसिडिटी की गैस की समस्या हो सकती है, उन सब के लिए ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो आम पन्ना इस प्रकार से बहुत बेनिफिशियल है उत्तर भारत में। गुजरात और राजस्थान की तरफ उन्होंने छाछ लस्सी का जिक्र किया है। छाछ लस्सी अपने आप में प्रोबायोटिक्स है, ये तो अपने आप में ही एक क्लेम है। प्रोबायोटिक नाम अपने आप में एक क्लेम है क्योंकि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया है। और ये यदि हम घर की बनी हुई दही से बनाते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी दूध के गुणवत्ता वाली चीजें भी मिलती है। और प्रोबायोटिक्स अपने आप में गट माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है और जो उसके कल्चरल माइक्रोफ्लोरा है उसमें गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ब्रेन गट जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को और गट बैरियर को एनहांस करता है, ब्रेन गट रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। उससे गर्मी में दिमाग भी शांत रहता है और स्ट्रेस रिडक्शन में भी ये बेनिफिट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने तीसरा जिक्र, उन्होंने हमें
0: पंजाब हरियाणा की लस्सी का भी जिक्र किया है।
1: लस्सी भी एक प्रकार का प्रोबायोटिक ड्रिंक है इसमें। और लस्सी में क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वाटर अमाउंट एडेड, हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को काफी डाइल्यूटेड रख सकते हैं, तो उसमें हम अपने प्रोबायोटिक के गुण भी हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा हमें फैट या हमें जो दूध का एक्सेस फैट या उसमें जो मलाई रहती है, चिकनाई रहती है, उसको भी हम डाइल्यूट करके उसकी चिकनाई को रिड्यूस कर सकते हैं। तो लस्सी, छाछ और इस प्रकार के भारतीय पेय पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तो सुनिश्चित करते ही हैं, रिहाइड्रेट करते हैं, रीमिनरलाइज करते हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक है और हमें अपनी पुरानी

0: अपनी परंपरा से जुड़ना चाहिए और बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स और एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक्स से बचना चाहिए।
1: जी, पर आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे और युवा जो हैं अक्सर जो बाजार में चीजें मिलती हैं, डिब्बा बंद सारी चीजें होती हैं, उन पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे उसको कहीं प्रमोशन किया जाता है उनको उस तरह से। तो ये जो एक धारणा अब बढ़ रही है और इस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घर में बनी हुई और ट्रेडिशनली जो चीजें बनती हैं वो ज्यादा लाभप्रद रहती हैं। तो क्या हाइजीन फैक्टर भी उसमें इंपॉर्टेंट है, और क्या बाजार में जो चीजें मिलती हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं?
0: आजकल युवा पीढ़ी पूरी तरह से पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ काफी आकर्षित है। उनको वो चीजें चाहिए जो कूल है, जो फैंसी है, वो ट्रेडिशनल और हमारे भारतीय दादी नानी के नुस्खों वाली चीजों को अनकूल समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें इतनी अत्यधिक मात्रा में चीनी एडेड रहती है। एक 300 ml का यदि हम एक कोल्ड ड्रिंक देखें तो उसमें लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी रहती है। कंपेयर टू जब हम ये ट्रेडिशनल आम पन्ना और इस तरह के ड्रिंक्स घर पे बनाते हैं तो वो मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें हम एक दो चम्मच चीनी, शहद या गुड़ से काम चला लेते हैं। प्रोसेस्ड ड्रिंक्स में इवन फ्रूट जूसेस जो बाजार में मिलते हैं उसमें परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स अलाउड है, उसमें फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स पड़ते हैं जो उनके कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है और वो परमिटेड भी है। तो कई सारे एडिड प्रिजर्वेटिव्स, परमिटेड फ्लेवर्स, सिंथेटिक कलर्स, प्रोसेसिंग एड्स अलाउड है सिंथेटिक ड्रिंक्स में, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में तो कैफीन की मात्रा रहती है, उसके अलावा उसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड्स पड़ते हैं, तो काफी सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस जाते हैं इनके फॉर्मुलेशन में। उसके कंपैरिजन में जब हम ये ड्रिंक्स, कोकम ड्रिंक, सत्तू का शरबत घर पे बनाते हैं, एक तो ये मिनिमली प्रोसेस्ड है, हम इनके फॉर्मूला को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसमें चीनी की मात्रा कम रख सकते हैं। और हाइजीन का आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उठाया, क्योंकि लोग शरबत के नाम पे गन्ने का जूस भी सड़क किनारे बिक रहे हॉकर से, वेंडर से लेते हैं, उसमें किस प्रकार का पानी का इस्तेमाल किया गया है, इवन जो बर्फ इस्तेमाल हुई है क्या वो बर्फ गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी थी कि नहीं, क्योंकि हम कई बार इन पैरामीटर्स को इग्नोर करते हैं, हम बर्फ के बारे में इतनी तहकीकात नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि पानी उसमें जो यूज किया गया है गन्ने को धोने के लिए या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए वो किस प्रकार का रहा है। तो एक मसला उसमें
1: मतलब वो वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हो सकते हैं,
0: और गर्मियों में बैक्टीरियल ग्रोथ काफी फास्ट रहती है, तो वाटरबॉर्न डिजीजेस का रिस्क रहता है जब हम ये चीजें खुले वेंडर से या स्ट्रीट फूड से हम खरीदते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इन सब ड्रिंक्स को युवा पीढ़ी को खुद बनाने को घर पे दे कि आप खुद बनाइए, क्योंकि जब वो खुद बनाएंगे तो वो पियेंगे भी।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और कोशिश करते हैं कि सब लोग अपने से बनाएं और एक कुछ वेरिएशन लाके बनाएं और कुछ इंटरेस्ट के साथ बनाएं, तो एक अच्छी चीज बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसको कंज्यूम करने में। डॉक्टर अनुपम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम जब बात कर रहे हैं मोनी दीपा मैम से, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी बताई, तो जब आप एज अ डॉक्टर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो बहुत एक्सट्रीम लू लगने के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण आता है, तो किस तरह के आप पे उनको सजेस्ट करते हैं फॉर रिकवरी?
2: देखिए, हम लोगों के पास जब कोई आ जाता है मरीज जिसको कि लू लग गई होती है या कई बार कहते हैं सरसाम हो जाता है जैसे, तो हीट से इलनेस हो गई है, तो उसको हम लोग यूजुअली तो सादा पानी अगर नहीं है कुछ तो हम लोग कहते हैं, नहीं तो हम लोग तरल पदार्थ वाला देते हैं, जैसा मौनी दीपा मैडम ने कहा, बहुत सही कहा है इन्होंने कि आपको जो है पानी में मिनरल्स डालने पड़ेंगे तो उसके लिए देते हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नींबू पानी है या बेल का शरबत है, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें आप अच्छे से दे सकते हैं। लस्सी है तो दही है, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। अब अगर अस्पताल में आता है तो फिर हम लोग जो है लिक्विड्स जो देते हैं तो फिर हम आईवी फ्लूइड देते हैं, तो उसमें अलग तरीके का देते हैं, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट अगर उसके कमी है तो ओआरएस का घोल हम लोग पिलाते हैं, तो ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं। तो आप अगर वैसे सादा पानी है समझिए, तो पानी जरा एक चुटकी नमक, जरा सी चीनी, ये डाल करके और नींबू डाल करके एक अच्छा पेयजल बन जाता है जो कि पूरी तरीके से पौष्टिक होता है। तो हम लोग अस्पताल में तो अब श्रोताओं के लिए हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें एसेस करना पड़ता है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि कितना डिहाइड्रेशन है
1: जी, बिल्कुल,
2: और ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कैसी चल रही है, नब्ज कैसी चल
1: वो तो
2: रही है,
1: हर पेशेंट का अलग
2: है, उस हिसाब से अलग है। लेकिन श्रोताओं के लिए मेरे हिसाब से जरा सी चीनी, अगर डायबिटीज नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं है तो जरा सा नमक और नींबू डाल करके पानी में एक बहुत अच्छा पेयजल बन जाता है जो आसानी से हर कोने में, भारत के भी और विश्व के भी हर कोने में चीज मिल जाती है। बाकी अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो जैसा मौनी दीपा जी ने बताया, आप लस्सी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा, तो आप दूध के कई तरीके के प्रकार की चीजें हैं जो आप बना करके ले सकते हैं
1: जी।
2: तो प्रोबायोटिक्स वाली चीजें कई मिलती हैं तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत सही बात है कि स्ट्रीट वेंडर्स जब तक ऑथोराइज नहीं है तब तक आप नहीं लीजिए, क्योंकि इस गर्मी में ना सिर्फ गर्मी से लेकिन और बहुत सारे संक्रमण होने की संभावना रहती है, और अगर आप किसी अनऑथोराइज वेंडर से लेते हैं तो ये जो मौसम होता है मई जून जुलाई, तो इसमें वाटरबॉर्न डिजीजेस, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा, ये सारी चीजें बहुत होती हैं, और ये तो ज्यादा सीरियस डिजीजेस हैं, लेकिन बाकी जो है डायरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां भी बहुत संभव है कि हो जाएंगी
1: जी जी। और खासतौर पर हम सुनते हैं गर्मियों में पेट संबंधी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसमें ये कारण भी जुड़ता है, पानी का तो है ही कारण कि साफ पानी नहीं पिया या खाना जो है रखा हुआ बना
2: घर
1: हुआ
2: में बना हुआ खाना और ताजा खाना, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में जैसा मौनी दीपा जी ने भी कहा, रात का बना खाना अगर आपने सवेरे खाया तो कई बार वो खराब हो जाता है
1: क्योंकि बहुत गर्मी में इजिली वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं उसमें। यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी रीना जी कि बहुत सारी बातें अभी हमने की पेय पदार्थों के बारे में, अभी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी क्योंकि और सारे राज्यों की बात अभी छूट गई है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ORS घोल है जो बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है नमक और चीनी मिला के, तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे आसानी से बनने वाले कुछ ड्रिंक्स हैं जो आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
3: इसमें आयुर्वेद में खजूर आदि मंथ एडवाइज्ड है टेक्स्ट बुक में, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। इसमें इमली डालते हैं, एक वृक्ष अम्ल एक प्लांट है मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुनक्का, इमली, खजूर, आंवला और अनार, चार गुना पानी में इसको भिगो देते हैं 4 घंटे के लिए, उसके बाद मैश करके छान के पी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको और पतला कर सकते हैं, अगर किसी को मीठा डालना है तो गुड़ या चीनी थोड़ी सी डाल के पी सकते हैं। अब इसमें जो खजूर है और मुनक्का है ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए आंवला तो सबको पता है कंप्लीट रसायन है, अनार वैसे ही बहुत अमृत है वो बॉडी के लिए, तो देखो कितने चुन चुन के आयुर्वेद में उसमें डाली गई हैं चीजें जो बिल्कुल सारी ठंडी हैं और आपको ऐसा एकदम ORS से ज्यादा बेटर शायद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, कि अगर आपको अगर घबराहट हो रही है और गर्मी लगी और ये करे आपने ड्रिंक पी ली तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको जरा भी वीकनेस रहेगी। ये रूटीन में दे सकते हैं गर्मी में, बच्चों को भी बड़े भी ले सकते हैं, शुगर नहीं है तो बिना शुगर के इनको ही मिक्स करके आप मिक्सी में ग्राइंड करके आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, अनंता, आम, कमल, किशमिश, गुलाब की पत्तियां, चंदन, उशीर यानी खस, खस की ठंडाई बनाते हैं लोग रात को भिगो के सुबह ग्राइंड करके दूध में, बादाम वगैरह भिगो के वो भी उसमें डालते हैं, ऐसा कुछ घरों में बनता है सुबह ये ड्रिंक। ठंडाई जो आजकल बनी बनाई आती है ये उसका घर पे बनने वाला वर्जन है कि रात को उसको भिगोते हैं, सुबह अच्छे से उसको पीसते हैं, दूध डाल के थोड़ा पानी डाल के थोड़ी चीनी डाल के थोड़ा सा काली मिर्च भी डालते हैं उसमें, एंड दिस इज वेरी गुड इन दिस समर सीजन, ये अक्सर बड़े लोग पहले पीते थे। और ये जो प्लांट्स मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी एक यूज करके उसका ड्रिंक बना के भी घर पे पी सकते हैं, लेमन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दिस इज वेरी गुड, चंदन सबको पता है उसको भी पानी में घोल के चीनी डाल के ले सकते हैं, खस, किशमिश, गुलाब, कमल और अनंता ये कॉमन है बट बाकी चीजें आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं एडवाइस करूंगी, किशमिश, मुनक्का, खजूर, काश्मीरी एक चीज आती है और फालसा, आजकल का सीजन है फालसा बहुत आता है उसमें, तो इन चारों को भी ग्राइंड करके मिक्सी में और उसके बाद एक ड्रिंक बन सकता है। और अगर आप इजाजत दें शालिनी जी तो मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रिंक्स बताए थे 3-4 ड्रिंक्स की रेसिपी बता दूं शायद।
1: हाँ, तो ये मैं रेसिपी जरूर आपसे सुनूंगी अभी मुझे और भी बहुत सारी बातें मौनी दीपा जी से भी पूछनी है, सर से भी पूछनी है, पर यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। डॉक्टर साहब कौन सा गीत आपको अभी याद आ रहा है या बहुत पसंद है आपको?
2: सुख के सब साथी दुख में ना कोई।
1: चलिए तो ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम लौटेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: आप हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में, और अभी रीना जी से हम कुछ रेसिपीज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोनी दीपा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे और ऐसे जो ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका खास तौर पर जिक्र किया है, जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सत्तू के शरबत के बारे में उन्होंने कहा है, और इनको सुपर फूड भी सत्तू को कहा जाता है न्यूट्रिशन की दृष्टि से, और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है कोंकण और गोवा की शान कोकम शरबत और सोल कढ़ी, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है कि एसिडिटी कम करती है, और दक्षिण भारत के पारंपरिक ड्रिंक्स जैसे पानकम, नीरमोर, संभाराम, उड़ीसा का बेलपना, इन सब की भी बात उन्होंने की है, तो इनकी खासियत भी जानना चाहूंगी, इन सब के बारे में बताइए।
1: सबसे पहले बात करते हैं सत्तू की।
0: जी,
1: इसको हम एक्चुअली वे पाउडर से कंपेयर कर सकते हैं। ये इस प्रकार का सुपर फूड है कि इसकी कंपैरिजन वे पाउडर से की जा सकती है, जो कि 10 गुना महंगा है इससे, परंतु इसमें उसी प्रकार का कंपैरेटिव न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। जी, सत्तू भुने हुए चने को पाउडर करके बनाया जाता है, इसीलिए ये पल्स बेस्ड प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये घर पे ही बनता है या इसमें सिर्फ ग्राइंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये मिनिमली प्रोसेस कैटेगरी में आता है, और इसी कारण से इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स काफी मात्रा में रहते हैं, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ही एनर्जी रिलीज करते हैं,
0: तो काफी समय तक ऐसा लगता है कि
1: पेट भरा महसूस होता है, क्योंकि इनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिलीज ऑफ एनर्जी स्लो रहता है, तो ये स्थिर ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं लंबे समय तक, तो आप 4-5 घंटे आराम से टिक सकते हैं सत्तू के 2-3 चम्मच ड्रिंक बनाकर। और सत्तू का ड्रिंक बनाना आसान है, आप 3-2 चम्मच सत्तू लीजिए, पानी 1 गिलास के करीब डालिए, काला नमक डालिए, उसमें भुना जीरा, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, और चीनी, गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार से डाल सकते हैं, तो ये ड्रिंक अपने आप में 100 ग्राम सत्तू क्योंकि आपको 20 ग्राम प्रोटीन देता है, और इसमें फाइबर्स हैं, इसमें लीन प्लांट प्रोटीन्स है, तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, इसीलिए सत्तू को सुपर फूड कहा गया है, और इवन कॉलेज के बच्चे, जिम गोअर्स, स्पोर्ट्स पीपल, इन सभी लोगों के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए, वेट वॉचर्स के लिए, हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये बहुत ही कंप्लीट फूड है, तो सत्तू पेट भी भरता है और ताकत भी देता है।
0: जी, जी।
1: इसके बाद हम बात करते हैं कोकम की, जो गोवा और कोस्टल एरियाज में बनता है, क्योंकि उन इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, इसलिए कोकम वहां अवेलेबल रहता है। कोकम एक प्रकार का आप फंक्शनल फूड की कैटेगरी में हम इसको लिख सकते हैं, और फंक्शनल फूड वो फूड कैटेगरी है जो बियॉन्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, तो ये एक प्रकार का एक अपने आप में ही अनोखा एक फूड इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड इसका प्राइम इंग्रेडिएंट है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड तो आपको समर की इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता ही है, परंतु इसके अलावा इसका एक बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है गार्सिनॉल। गार्सिनॉल अपने आप में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है, ये पेट को ठंडा रखता है और पेट से जुड़ी हुई जो ये एसिडिटी और जलन की समस्याओं को कंट्रोल में करता है, और इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इतने पोटेंट है कि वो कई बार कंप्लीट बाकी विटामिन से काफी स्ट्रेंथ, इनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है जो कोकम शरबत में पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, और इट इज लोडेड विद कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, तो कोकम एक कंप्लीट फंक्शनल फूड है, और कोकम शरबत केवल गोवा या महाराष्ट्र में ही नहीं, हमें उत्तर भारत में भी हम इसको पी सकते हैं। सोल कड़ी और नीर मोर की भी बात करी है प्रधानमंत्री जी ने, नीर मोर दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है, और नीर मोर का यदि हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, नीर पानी को कहते हैं और मोर इज बटर मिल्क, तो अच्छा। पानी वाला बटर मिल्क, तो ये डाइल्यूटेड बटर मिल्क का ही फॉर्म है जो हम उत्तर भारत में लस्सी छाछ पीते हैं, नीर मोर उसी का ही एक पतला वर्जन है, इसमें काफी मात्रा में 3-4 गुना मात्रा में पानी डाला जाता है, और फिर इसमें हींग, अदरक जैसी, और पेपर, पुदीना, इस तरह का हरी मिर्च का भी तड़का लगाया जाता है, तो इस तरह से ये एक उनका छाछ है, ये भी प्रोबायोटिक ड्रिंक है, और क्योंकि इसमें अदरक, कड़ी पत्ता का तड़का लगता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी मात्रा में हमें हरी पत्तियों से आयरन भी मिला, अदरक डाइजेस्टिव होता है, तो ये क्योंकि हमारा अपच की समस्या गर्मियों में बढ़ती है, डाइजेशन थोड़ा धीमा पड़ता है गर्मियों में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव रखता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं सोल कढ़ी की, सोल कढ़ी भी एक प्रकार की प्रोबायोटिक बेस्ड एक रेसिपी है, और जिस जिस खाद्य पदार्थ में हम प्रोबायोटिक दही लस्सी जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें अपने आप में हमें एक्टिव बैक्टीरिया के बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे हम उसको कढ़ी के फॉर्म में खाएं, चाहे हम उसको लस्सी छाछ या हम उसको सांबरम के रूप में या नीर मोर के रूप में खाएं, इन सभी में जो जो मसाले पड़ रहे हैं, अगर जीरा पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा पोटेशियम दे रहा है।

0: काला नमक पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा सोडियम दे रहा है, तो हम जो जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिला रहे हैं उस प्रकार से हमें कुछ कुछ कुछ कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते रहते हैं। तो ये जितने भी हम ट्रेडिशनल हर्ब्स स्पाइसेस और प्रोबायोटिक्स मिला के ड्रिंक्स बनाते हैं वो अपने आप में एडेड हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, गट माइक्रोबायोम को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इनके बहुत बेनिफिट्स हैं।
1: जी जी, बहुत सारी खाने की चीजों का नाम आपने लिया एक के बाद एक, तो हमारे श्रोताओं का भी अगर मन कर रहा है तो जल्दी से आप जा सकते हैं कुछ खा के आए, क्योंकि हम यहाँ पर एक गीत का ब्रेक लेंगे, एक गाना सुनकर आएंगे, आप फटाफट वापस आइए, लेकिन आपकी पसंद का गीत ही सुनेंगे। मोनी दीपा जी बताइए कौन सा गीत सुनवाएंगी?
0: जी, हमने इतने सारे हमने शरबतों की बात कर ली है, कोकम से लेकर बेल शरबत की, तो एकदम टैंगी फ्लेवर हमारी हो चुका है हमारी टंग पे, तो इसी बात पर हम निबुड़ा निबुड़ा गाना सुनते हैं।
1: ओके, चलिए तो ये गीत सुन लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा सा नृत्य भी है, तो ये गीत सुनते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मैं हूं शालिनी मित्तल और इस गीत को सुनते सुनते एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो ये कि फिजिकल मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में तो खैर कहा जाता है कि आप बैठ जाते हो एक जगह, पर गर्मियों में भी हम देख रहे हैं क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है उसमें हम फोन, मोबाइल, टीवी, इसके कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहां पर लाइफ स्टाइल का काफी रोल बताया गया है और उसमें योग, प्राणायाम और ध्यान, इस पर भी काफी स्ट्रेस दिया गया कि इससे भी तनाव कम होता है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उस पर कुछ बताएं और कुछ ऐसे प्राणायाम भी होते हैं जो खास तौर पर गर्मियों में करने के लिए कहा जाता है।
1: जी शालिनी, सुबह अगर शीतली प्राणायाम करें या जब भी आपको गर्मी लग रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में शीतलता आती है। इस पर बहुत रिसर्च हुई हुई है कि ये शीतलता प्रोवाइड करता है। और अगर हम योगा, जिम, एक्सरसाइज जो भी हमें करना है वो हमें सुबह करना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बात तो बहुत ज्यादा रिग्रेस एक्सरसाइजेस हम विंटर्स में एडवाइस करते हैं, समर्स में नहीं करते। बट क्योंकि आजकल के लोग सारा दिन भी कोई काम नहीं करते, ज्यादातर लोग सेडेंटरी वर्कर हैं और नहीं भी हैं तो काम कम करते हैं, तो इसलिए सुबह एक्सरसाइज जरूर करें और उसके बाद ओवर एक्सर्ट ना करें, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करें और जितने भी योगा है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप करें ताकि गर्मी में आपको ना निकलना पड़े और आप आराम से उसके बाद नहा धो के बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सम्यक दिनचर्या में कह सकते हो।
0: तो इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम कि किस तरह से लाइफस्टाइल का रोल होता है, क्योंकि बहुत आजकल केसेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के।
2: देखिए, लाइफस्टाइल का, रहन सहन का रोल तो हर चीज में है और बीमारी के बचाव में बहुत ज्यादा है। गर्मियों में तो बहुत जरूरी है कि आप अपना व्यायाम करें, लेकिन इसको ध्यान रखें कि व्यायाम आप ठंडे समय में करें, तो अर्ली मॉर्निंग करें जहां तक संभव हो, और दिन में तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप को शाम को कर सकते हैं तो फिर खाने के बाद या शाम को खाने से जस्ट पहले करें। खाने के बाद आप बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा व्यायाम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन खाने से जस्ट पहले कर सकते हैं। लेकिन वो भी एहतियात बरतनी पड़ेगी क्योंकि जब लू चल रही होती है तो रातें भी गर्म होती है और उस समय फिर बाहर जा करके आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शरीर का चलना जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि बैठने से काम नहीं होता, सर्दियों में तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मी ऐसा मौसम है जबकि आपको चलना चाहिए और व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पर ध्यान रखें कि जो लोग अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वयस्क लोग हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जब वो व्यायाम कर रहे हैं तो साथ में कुछ तरल पदार्थ वाला पानी रखें या पानी पीने के बाद व्यायाम करें या व्यायाम करने के बाद फौरन पानी लें, क्योंकि जब भी आप व्यायाम करेंगे तो थोड़ा पानी, पसीना तो आप लूज करेंगे ही और पसीने के साथ तरल पदार्थ भी लूज करेंगे, तो उसको जो है शरीर में रिप्लेनिश करना, आपूर्ति करना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान देकर के व्यायाम करें। बहुत ज्यादा जिनमें एनर्जी लग रही है या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको ध्यान दें। ऐसे में जिन लोगों को बीमारी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की या दिल की, उनको जो है बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर से पूछ करके तभी व्यायाम करना चाहिए या कोई नया व्यायाम शुरू करना चाहिए।
1: जी चालीन जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें। समर्स में सबको अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा नैप जरूर लेना चाहिए आफ्टरनून में, उससे भी आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और आप बाकी रात तक आप काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है ग्रीष्म ऋतुचर्या में कि समर्स में हो सके तो थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए हमें।
0: और मोनी दीपा जी, हमने बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात की, पर एक ड्रिंक और है जो दक्षिण भारत में बहुत पॉपुलर है और पारंपरिक ड्रिंक्स में शामिल होती है, वो है पनकम। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
3: पनकम दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित ड्रिंक है और ये बहुत ही पतला रसम जैसा एक बेवरेज है। ये इसके तीन ही मेजर इंग्रेडिएंट्स है, इसमें गुड़ पड़ता है, इसमें पेपर पड़ता है और इसमें जिंजर, सूखा जिंजर जिसको सौंठ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कैलोरीज, क्योंकि ये बेसिकली वाटर बेस्ड ड्रिंक है तो इसमें कैलोरीज 100 से भी कम रहती है, तो काफी वेट वॉचर्स के लिए भी इस तरह का ड्रिंक फायदेमंद है और इसमें बाकी चीजों का भी कोई लोड नहीं है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये जैगरी बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ में आयरन रहता है और साथ में इसमें पेपरिका, पेपर का इस्तेमाल किया गया है, तो पेपरिका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में काफी मदद करता है। ये एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाता है उस न्यूट्रिएंट के साथ, तो पेपरिका

0: बड़ा हुआ जैगरी, तो उसमें से आयरन एब्जॉर्प्शन काफी बढ़िया रहता है। तो पेपरिका और गुड़ का ये बहुत ही साइंटिफिक कॉम्बिनेशन किया गया है। और पेपर का इसके अलावा भी एक रोल है। पेपर आपको गर्मियों में भी हमारे ब्रीदिंग कंजेशंस को ये रिलीफ करता है। ब्रीदिंग की समस्या आजकल पोल्यूशन के कारण गर्मियों में भी रहती है, तो पेपरिका क्योंकि इस ड्रिंक में रहता है पेपर, जिसे काली मिर्च कहते हैं, तो ये ब्रीदिंग रिलेटेड समर कंजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये ड्रिंक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चों को खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन की काफी समस्या रहती है। तो पानकम अपने आप में एक कंप्लीट लिक्विड वाटर बेस्ड ड्रिंक है, प्लस इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं।
1: जी, एक आध ड्रिंक्स और बच गई थी जो मैं चाहूंगी कि वो भी श्रोताओं तक पहुंचे। एक तो उन्होंने बताया था संभाराम और ओडिशा का बेल पन्ना।
0: जी, संभाराम एक प्रकार का पनकम का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की तरफ पनकम को ही संभाराम के रूप में अच्छा। का नाम दिया गया है। इसका बेसिक फॉर्म्यूलेशन पनकम जैसा ही है, और कई लोग इसमें गुड़ ना डाल के मिश्री डालते हैं, पर मोर और लेस इसके मेजर थ्री इंग्रेडिएंट संभाराम और पनकम के सेम ही है। बेल शरबत उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है, और बेल शरबत भी अपने आप में एक फंक्शनल फूड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बेल में पाए जाने वाले टैनिन्स जो हमें चाय से भी मिलते हैं, हमें कॉफी से भी मिलते हैं, बट बेल में पाए जाने वाले ये टैनिन हमारे डाइजेस्टिव स्लगिशनेस जो समर्स में आती है उसको रिलीफ करता है। ये डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों चीजों से ये टैनिन हमें सेव करता है। और बेल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो विटामिन सी युक्त कोई भी बेवरेज आपकी समर इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, लू से बचाता है, और विटामिन सी बीइंग एंटीऑक्सीडेंट तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हमारे जो सेल्स में गर्मी की वजह से जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में डैमेज होता है उसको ये हील करता है। तो बेल रस अपने आप में बहुत ही एक थेरेप्यूटिक ड्रिंक जैसा है, और ये भारत में आजकल उड़ीसा के अलावा बाकी कई क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात हुई, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बीच में चाय कॉफी का जिक्र किया, तो मेरे जहन में ये सवाल आया, मैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश से करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब बहुत ही कॉमन है और इंडिया में, और खासतौर पर अगर वर्किंग करें, वर्किंग भी नहीं घर में भी अगर हम रहते हैं तो बहुत ही इजीली, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, हम कहते हैं अरे चाय पी लो कॉफी पी लो, तो ये सही है कि नहीं? मतलब बाकी ड्रिंक्स की तो हम बात कर रहे हैं, पर विच इज द मोस्ट कॉमन उसकी बात हमने नहीं की है, तो वो भी
2: देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लोग चाय कॉफी या जैसे कि पहले बात हुई कि बच्चे लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, कैफिनेटेड बीवरेजेस पीते रहते हैं, लोग ड्रिंक करते रहते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये सब नुकसानदेह हैं। ये सब हालांकि लिक्विड है, मतलब सब तरल पदार्थ है मतलब, लेकिन ये सब जो है ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें जो कैफीन होता है या टैनिन्स होते हैं ये थोड़ा डायरेसिस करते हैं, मतलब पेशाब बढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो आप पानी पीते हैं, लेकिन इनमें जो तत्व होते हैं टैनिन्स या कैफीन, या कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफिनेटेड बीवरेजेस होते हैं, तो वो जो है वो आपको यूरिन बढ़ाते हैं। तो ये लेने से आपका ना डिहाइड्रेशन करेक्ट होता है, बल्कि नॉर्मल आदमी में भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गर्मियों में चाय या कॉफी जैसे पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर में पानी की कमी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: जी जी, रीना जी, कुछ जो ड्रिंक्स की हम बात कर रहे थे, मोनी दीपा जी बता रही थी, उनकी रेसिपी आप बताना चाह रही थी, तो प्लीज शेयर करें हमारे लिसनर्स के साथ।
3: जैसे दीपा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इनके कंटेंट्स, पनकम में गुड़ डलता है, ड्राई जिंजर पाउडर, लेमन भी डालते हैं इसमें कुछ लोग, और छोटी इलायची डालते हैं, बहुत उस पर रिसर्च पेपर्स हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ब्लैक पेपर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है, नमक डालते हैं, एडिबल कैम्फर भी डालते हैं इसमें, और तुलसी के 3-4 पत्ते डालते हैं, ग्रीन चिली भी कुछ थोड़ा बहुत डालते हैं अगर किसी को डालनी हो तो। इसको ग्राइंड करके ये पानी में जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैगरी डाल के ये लोग पीते हैं, इसको पानकम बोलते हैं। सोल कड़ी एक मैंने देखा था, इसमें क्यूमिन डलता है, गार्लिक डलता है, ग्रेटेड कोकोनट डलता है, और कुछ इसमें ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, ये डाल सकते हैं, और इसको भी ग्राइंड करके और पीते हैं। ऐसे नीरमोर भी एक तक्र, संभाराम भी एक तक्र का, यानी छाछ का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो इधर बहुत कॉमन पीते हैं लोग। तो ये कुछ ड्रिंक्स हैं जो हमारी रेसिपी मतलब थोड़ा सा अलग थी इधर नॉर्थ इंडिया से। तो ये सब पी सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली भी, और दीपा जी ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको।
1: जी, तो गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर हमने बहुत सी आज यहाँ पर चर्चा की, और इस चर्चा से स्पष्ट हुआ कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं।

0: ही है, बल्कि संतुलित जीवन शैली, उचित आहार, पर्याप्त जल सेवन और हमारे पारंपरिक भारतीय पेय जो है वो अगर हम नियमित उनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार स्थानीय और पारंपरिक खाद्य और पेय पदार्थों को अपनाने का आह्वान किया गया है, वो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है बल्कि स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हमारे सभी सम्मानित विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर आप निकाल कर आए हैं, विचार हमारे श्रोताओं तक साझा किए हैं। हमारे साथ, मैं बता दूं, इस चर्चा में शामिल रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में। हमारे साथ रही डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद विशेषज्ञ, और हमारे साथ थी मुन्नी दीपा तालुकदार, आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पर्याप्त पानी पिएं और इस गर्मी में अपने पारंपरिक पेय पदार्थ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स, प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान, और इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ थे यानी शालिनी मित्तल के साथ। और स्वीकार कीजिए अब मेरा भी नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं और अब नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार किताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। और समाचारों के अंत में, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार को कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उन्हें फिल्म अदामिन्ते मकान अबू में अभिनय के लिए 2010 में सर्वोत्तम अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राम्य फिल्म पुरस्कार मिला था। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर। जो वादा किया था वो पूरा करना पड़ेगा, वो निभाना पड़ेगा। यही कहते हुए आज मैं आ गई हूँ FM रेनबो के स्टूडियोज में। 11 और 12 के बीच हमने सुना खास दिल्ली से कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। फिर हुए समाचार और 12:02 हुए हैं FM रेनबो पर। हर रोज की तरह म्यूजिक कैफे कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है और आज रविवार के दिन रोशनी आपके साथ है। रविवार के दिन क्या खास होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले आज बाकी किसी काम के बारे में याद आए ना आए, आज सुबह सुबह उठकर जो है खुद को चाय या फिर कॉफ़ी की अच्छी ट्रीट देनी है कि आराम से आज पी सकते हैं। कहीं पर जाने की जल्दबाजी नहीं है, पूरा हमारा जो अटेंशन है आज उसी पर दिया जा सकता है। इस उम्मीद और खुशी के साथ जो है दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद नाश्ते में क्या करना है, खाने में आज

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: देखो, रविवार की दोपहर है, 12:15 हुए हैं और 16 हो भी गए, और ऐसे वक्त में फिर दिमाग चलने लगता है कि आज लंच में क्या खाए। कई बार घर पर ही खास प्लान बन जाता है या फिर बाहर जाकर खुद को ट्रीट देते हैं, लेकिन सालों के अनुभव के बाद हमने भी ये समझ लिया है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि हम किसके साथ खाना जो है खा रहे हैं। क्योंकि देखो, कई बार ऐसे होता है हम उनके साथ खाने के प्लान्स बनाते हैं जिनकी जो खाने की पसंद है हमारी तरह बिल्कुल एक जैसी है, तो जब एक जैसे पसंद वाले खाना खाने के प्लान्स बनाते हैं उसका मज़ा होता है, वो कुछ और होता है। कई बार कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हमारे साथ खाने पीने की जो पसंद होती है बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होती है, लेकिन उन्हीं के बदौलत कुछ नया कुछ अलग हम ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैंने पाया है या फिर आप लोगों का भी अनुभव रहा है कि आजकल जहाँ भी जाए, जिससे भी मिले, इनके डाइट चलते रहते हैं और फिर खाने का मज़ा जो है थोड़ा सा इनकी वजह से या फिर इन डाइट की बातों की वजह से थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो दिल से खाना खाते हैं, दिल से खाने का आनंद लेते हैं, और उनके साथ जब खाने पीने के प्लान्स बन जाते हैं तब मज़ा कुछ और ही होता है।

एक आम इंसान एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने रेस्टोरेंट्स को विजिट कर सकता है और वहां पर खाने का मजा ले सकता है? बस एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर जाना है तो कुल मिलाकर कितने करना मुमकिन है? ऐसी ही कुछ खास कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या आपको पता है कि दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके नाम है, जिन्होंने एक ही दिन में सबसे ज्यादा फास्ट फूड जॉइंट्स पर जाकर खाना खाया, और वो आंकड़ा सुनकर हम तो चौंकने वाले हैं। ये छोटी छोटी कहानियां आज आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर रोशनी के साथ कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक कैफे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

पुणे की एक इन्वेस्टर बैंकर जिसे ट्रैकिंग और खाना इन दो ही चीज़ों का शौक था। ऐसे ही एक इतवार को अपने फूडी कलीग के साथ दोनों ने फूड वॉक टूर के साथ ये दोनों जुड़ गई और वहाँ पर उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि सुबह 7 बजे पहुँचना है और वहाँ पहुँचने के पहले पानी के अलावा ना कुछ पीना है ना कुछ खाना है। जैसे बताया गया था उसी तरह उसका पालन करते हुए दोनों सुबह 7 बजे पहुँच गई। उन्हीं की तरह और 30 फूडीज उनके साथ थे। 7 बजे जो है फूड वॉक शुरू हो गया। चलते चलते अलग अलग जगहों पर गए, वहाँ का खाना खाया और शाम होते होते कुल मिलाकर इन दोनों ने 20 अलग अलग फूड जॉइंट्स और रेस्टोरा का खाना खाया हुआ था। तो यशस्विनी जो है, जो इन्वेस्टर बैंकर है पुणे की, उनके फूड एक्सप्लोरेशंस आज भी जारी है। लेकिन जब भी खाने पीने की बात आती है और एक ही दिन में कितने ज़्यादा अलग अलग जगहों का खाना खाया है, तब ये किस्सा और ये दिन उन्हें हर बार याद आता है। वैसे वाकई क्या मुमकिन है एक ही दिन में 20 जगह का खाना खाना? लेकिन अगर जो भी दिल से कोई कुछ पसंद करता है उसके लिए ज़रूर कोशिश होती है और वो पूरा कर दिखाते हैं, जैसे इन्होंने कर लिया। अपने खाने के प्रति प्यार को इस तरह जो है पूरा कर दिखाया।

जानती हूँ जानती हूँ, पिछला आंकड़ा सुनकर ही बहुत सारे लोग जो है चौंक गए हैं कि एक ही दिन में 20 अलग अलग जगह पर कैसे खा सकते हैं। कुछ हमारे लिसनर्स हैं वो फ़ोन करके तो ये भी कह रहे हैं, दो वक्त भी मुश्किल से मिल जाता है खाना खाने के लिए वक्त। और यहाँ पर जब जान लिया है कि एक ही दिन में लोगों ने 20 अलग अलग जगह पर खाया है, अब ये आंकड़ा सुनकर अगर हमें सरप्राइज़ मिला है, शौक मिला है, तो क्यों ना उनके बारे में भी जान लें जिन्होंने इस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये नाइजीरिया का केवल 22 साल के एक फूड कंटेंट क्रिएटर है, जहां पर इन्होंने एक ही दिन में यानी 24 घंटे में 150 फूड जॉइंट्स पर खाया है। तो उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जिन्होंने 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा फूड फास्ट फूड सेंटर्स पर खाया है, और वो आंकड़ा है 150। तो ये सारे जब आंकड़े सुनते हैं और ऐसी सारी किस्से कहानियां जान लेते हैं, तब वाकई लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग सचमुच सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। और अब एक जरूरी समाचार। भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है A2524467042 और पासवर्ड है A#179#157। इस प्रकार है, अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।

वर्ल्ड फूड, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हाय हाय, ये खाने पीने की बातें करते करते क्या हो गया। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और जब खाने पीने की बातें हो रही थी, ऐसे लोगों के बारे में भी हमने जाना जिन्हें खाने से इतना प्यार है कि एक ही दिन में उन्होंने जितने भी सारे शौक थे वो पूरे कर लिए। लेकिन ऐसे ही हमारे और भी कई सारे लिसनर हैं, और उनका भी खाने से प्यार तो है, लेकिन जो तरीका है, देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा सा अलग है। उन्होंने अपने अंदाज़ में अपने दिल की बात हम तक पहुंचाई है। तो प्रणव शिंदे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, थाली में जो आया है उसे बेकार न करना, थाली में जो आया है उसे बेकार न करना, अन्न की इस नेमत को कभी अनादर न करना। शुद्ध और सुरक्षित भोजन ही है जीवन का आधार, सेहत से अपनी कभी ना कोई समझौता करना। खेत से लेकर थाली तक भोजन रहे हमेशा शुद्ध, बीमारियों के खिलाफ मिलकर अब छेड़ना है हमें युद्ध। जागरूक बनेंगे हम और सबको जागरूक बनाएंगे, इस खाद्य सुरक्षा दिवस पर नया संकल्प हम अपनाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। थाली में जो आया है वो जो है बेकार कभी नहीं करना है, ये सबसे बड़ी सीख है। कम ज़्यादा ये अपना अपना शौक है, अपनी अपनी ज़रूरत है, लेकिन खाने का अनादर कभी नहीं करना है। और इसी नोट पर म्यूज़िक कैफ़े कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। ठीक 1 बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के छत्रपति संभाजी नगर से मराठी समाचार, और 1:05 पर फिर एक बार मिलूंगी मैं ठीक यहीं पर लेकर कार्यक्रम हिट एंड हॉट। अभी के लिए म्यूज़िक कैफ़े का आखिरी गीत।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एयर ऐप और साथ ही 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूँ रोशनी। मराठी समाचारों के बाद अब शुरू हो गया है कार्यक्रम हिट एंड हॉट। पिछले बार मिले थे तब हिंदी क्विज जो है हमने खेला था, साथ ही आपके पसंद के गाने भी सुने थे और आज भी रविवार के दिन यही होगा, कुछ मजेदार से हिंदी फिल्मों के क्विज और साथ ही आपके पसंद के गाने। और कई सारे लोग जो है आज की बर्थडे गर्ल अमृता राव को बधाई देना चाहते हैं उनके जन्मदिन पर और उन्हीं के फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, जैसे कि संजय दर्शन और प्रणव शिंदे। तो आपका हक जो है मैं आपको दे रही हूँ, बैक टू बैक दो गाने। पहला गाना विवाह फिल्म से और उसके बाद जो है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का गाना, और उसके बीच सवालों के साथ मैं फिर एक बार लौट आऊंगी ओनली ऑन एफएम रेनबो।

क्या खूबसूरत सा गाना है, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़, ए आर रहमान का संगीत। और इस गाने के बाद जो अगला गाना हम सुनेंगे उसकी और जो है फरमाइश की है चेतन कुमार, पंकज मोहत, फिरोज सिगनपुरिया और साथ ही आसाम से हितेंद्र दास भी हमें सुन रहे हैं और सभी जो है आज की बर्थडे गर्ल अमृता राव की पसंद का और उनके फिल्म का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो अगला गाना ज़रूर हम सब साथ में मिलकर सुनेंगे। आप सब तैयार हो जाओ और जितने भी सारे एफएम रेनबो के लिसनर्स फिलहाल मुझे सुन रहे हैं तैयार हो जाओ क्योंकि आज का पहला सवाल ये है कि मान लो सलमान खान हमारी हिंदी फिल्मों के प्रेम है, शाहरुख खान राज और राहुल है, तो ऋतिक रोशन कौन है? वैसे जवाब तो बहुत आसान है, देखते हैं जल्दी जल्दी कौन ये इस सवाल का जवाब मुझ तक पहुंचाएगा। तब तक हम सभी साथ मिलकर सुनते हैं मैं हूं ना फिल्म से गाना।

अगर शाहरुख खान हमारी हिंदी फिल्मों के राज और राहुल है, सलमान खान प्रेम है, तो ऋतिक रोशन क्या है? ये सवाल पूछा गया था और मुझे लगा कि बहुत ही आसान सा जवाब है और बाकी कुछ लिसनर्स ने उसी वक्त जल्दी जल्दी जो है सही जवाब मुझ तक पहुंचाया। लेकिन आदर्श कनौजिया का कहना है कि ऋतिक रोशन हमारी हिंदी फिल्मों के जादू है, तो ये कैसे मुमकिन है? साथ ही रविन भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनका कहना है कि ऋतिक रोशन क्रिश है, तो ये दोनों जवाब पूरी तरह गलत है। जैसे सलमान खान प्रेम है, शाहरुख खान राज और राहुल है, उसी तरह ऋतिक रोशन अपनी पहली फिल्म से ही बन गए हैं हमारी हिंदी फिल्मों के रोहित, क्योंकि पहली डेब्यू फिल्म में ही उनका नाम रोहित था। इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतने हिट हो गए वो ऑडियंस के बीच कि बागी के आगे की कई सारी फिल्में हैं, चाहे वो आप मुझे अच्छे लगने लगे हो या फिर उनके पिता के साथ जितनी भी सारी फिल्में हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि उनका नाम जो है रोहित ही है। तो सलमान खान प्रेम है, शाहरुख खान राज और राहुल है और ऋतिक रोशन रोहित है। सही जवाब भेजने वाले सबसे पहले दो जो लिसनर है वो है प्रणव शिंदे, पंकज महोद, उसके बाद और भी चेतन कुमार ने भी जो है सही जवाब हम तक पहुंचाया है। और जिन्होंने नहीं सही जवाब दिया है कोई बात नहीं, एक और सवाल का जो है मैं आपको पूछूंगी। पहले ऋतिक रोशन की फिल्म से गाना, उसके बाद समाचार और उसके बाद रोशनी का सवाल आप सुन पाएंगे सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर।

नमस्कार, न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। अब कुछ ही पलों में यानी दोपहर के ठीक 1:30 पर हम सुनेंगे मराठी समाचार, तो बने रहो 107.1 जो है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।

मराठी समाचारों के बाद हिट एंड हॉट कार्यक्रम में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। और ये क्या कह दिया कि रोशनी क्या बात है, सवाल पे सवाल किए जा रही हो, तो बात तो बिल्कुल सच है। इसलिए इस वक्त का एक और सवाल ये है कि ऐसी कौन सी दो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्में हैं जो मैनिफेस्टेशन पर आधारित है, यानी जो हम सपना देखते हैं वो पूरा ज़रूर होता है, इसका जो है एक उम्मीद दी जाती है, उसे कंफर्मेशन दिया जाता है। ऐसी कौन सी दो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्में हैं, हम सबको पता है, सबकी पसंदीदा फिल्में हैं, बहुत ही पॉपुलर फिल्में हैं और डायलॉग है, कौन सी वो दो फिल्में हैं ज़रूर बताना। तब तक हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे लिसनर हैं जैसे कि विजेंद्र घटोल जो अकोला से सुन रहे हैं, भारती और दुर्गेश मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और शुभ लक्ष्मी मस्तकर, ऐसे हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए लक्ष्य फिल्म का गाना आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

ऐसी कौन सी दो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्में हैं जो मैनिफेस्टेशन पर आधारित है? तो कई सारे फिल्मों के ऑप्शंस मुझ तक पहुंचे हैं, लक्ष्य, ओम शांति ओम, इकबाल, 12th फेल। जानती हूँ ये सारी फिल्में हैं जहाँ पर जो सोचा था जो ठाना था वो आखिर कर दिखाया। ये सारी फिल्मों के जो मोटिव था वो सही था, लेकिन ऐसी दो फिल्में जो मेन स्ट्रीम रही हैं और जिन्होंने समझाया हमें और बहुत सीधे और एंटरटेनिंग तरीके से बताया गया था कि जो सपना देखा है वो ज़रूर पूरा होता है। तो पहली फिल्म है जब वी मेट, और एक डायलॉग भी है उस फिल्म में कि जो कुछ इंसान रियल में चाहता है एक्चुअल में उसको लाइफ में वही मिलता है। और दूसरी फिल्म है ओम शांति ओम। सिर्फ एक ही लिसनर ने सही जवाब इसका भेजा है, वो है प्रणव शिंदे, और वो आइकॉनिक डायलॉग हम कैसे भूल सकते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में कोशिश में लग जाती है। तो ये दो फिल्में हैं जब वी मेट और ओम शांति ओम, जिसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बड़ी आसानी से और मज़ेदार तरीके से समझाया है। तो बस इस रविवार को यही कहते हुए आज के लिए मैं आपको टाटा गुड बाय कहती हूँ कि सपने देखो, बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाओ, और जब आप अपनी मेहनत करना शुरू कर दोगे कायनात जो है वो भी आपकी ज़रूर मदद करेगी। तो बस बड़े बड़े सपने देखो और उन्हें जल्दी जल्दी पूरा कर कर जो है आपकी न्यूज़ मुझ तक पहुंचाओ, और आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर हर दम जुड़े रहो, सुनते रहो। आज के लिए रोशनी की तरफ से टाटा गुड बाय।

0: Moreover, cycling is an effective solution to one of the biggest problems today, heavy traffic.
1: वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है.
2: Actor Vikrant Messi, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement.
3: It's an incredible initiative, and like you said, it's become a movement, almost happening for more than a year and a half now. And today, as we speak, I stand corrected, there were nearly 15,000 people today, and simultaneously every Sunday 200 cities across India participate in this movement.
2: The India Meteorological Department, IMD, has forecast widespread rainfall across the country for the next 2 to 3 days as southwest monsoon advances, while heatwave conditions continue to persist in parts of north and central India. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, West Rajasthan and coastal Andhra Pradesh for the next 4 days. Northwest India and Central India are likely to experience a rise in maximum temperatures by 2 to 6 degrees Celsius over the next 3 days. Today marks the 100th day of the conflict between the United States and Iran, a confrontation that has steadily expanded beyond its original front lines to affect key flashpoints across the Gulf and wider West Asia. What began with US and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increased pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. We have a report from our West Asia correspondent amid fresh escalations in the region.
4: On the 100th day of the conflict, tension still prevails in the Strait of Hormuz, with kinetic activity continuing to threaten one of the world's most important maritime corridors. U.S. Central Command says American forces intercepted 2 Iranian one-way attack drones on Sunday after determining they posed a threat to international shipping. The incident follows Friday's downing of 4 Iranian drones and subsequent U.S. strikes on Iranian radar and surveillance installations at Goruk and Kesham Island. Iran responded on Saturday by launching ballistic missiles towards Bahrain and Kuwait, with U.S. officials reporting that most were intercepted before reaching their targets. The crisis has also spilled into other fronts in West Asia. In southern Lebanon, a Lebanese military vehicle near Nabatea was struck during an Israeli operation, resulting in casualties among Lebanese armed forces personnel. Diplomatic initiatives aimed at halting the conflict continue, although significant obstacles remain. Discussions focus on preserving the ceasefire, ensuring the security of maritime navigation through the Strait of Hormuz, sanctions-related issues, and the future of billions of dollars of frozen Iranian assets held abroad. This is Vinod Kumar for Akashwani News, Dubai.
2: Just in, Prime Minister Narendra Modi has expressed sorrow at the passing of veteran actor Saleem Kumar. In a social media post, the Prime Minister said that the actor made a mark with his versatility and memorable performances across a wide range of roles over the course of his distinguished career. Mr. Modi said that his thoughts are with the actor's family and countless admirers in this hour of grief. In cricket, India have declared their innings at 564 for 8 on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh. In response, Afghanistan were 28 for 1 in their first innings when reports last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in the next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
5: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी, व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
6: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
5: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
0: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
7: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
5: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
8: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये सम...

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल

खावी कोड़ी न अरे वांगी न दौड़का जोड़ी न काकड़ी भी खावी कोड़ी न गाजर नी मुड़ा दूधी दूध खुड़ा पावटे

ठंडा हो। क्यों चाचा क्या हुआ? कोमड़ी आधी का अंडा हो। अंडा अंडा कोमड़ी पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। सलाम जैन राहू सारे हसबू या दुनियेला। सलाम जैन राहू सारे हसबू।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: पांच बजकर दो मिनट का वक्त और आप लुत्फानंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ लव यू जिंदगी में, और आपने ट्यून किया 107.1 एफएम रेनबो मुंबई लव यू जिंदगी, जहां हम बात करते हैं जिंदगी से लबरेज, जिंदा दिली से लबरेज, कुछ ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाए और जिंदा दिली से जीने पर मजबूर कर दें। फिलहाल तो जिंदगी क्या कहना चाहती है और किस मूड में है वो इस गाने से बयां करती है जिंदगी आपको, और हम बयां करेंगे आपसे अपने दिल का हाल। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे साथ ये मोहब्बतों भरा साथ ही बनाए रखें। सुनते रहें 107.1 एफएम रेनबो मुंबई, अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ।

लव यू जिंदगी में, जिंदगी से मोहब्बत करने वाली कुछ बातें आप हमारे साथ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा नाम है आदित्य, हम हैं आपके साथ। और मौन की भी एक भाषा होती है जिसे आप शायद ठहर कर सोचेंगे, देखेंगे तो समझेंगे। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। मानो चुप रह गए तो जैसे पीछे छूट जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने उस बातचीत को महसूस किया है जो शब्दों के बिना होती है? जब दो लोग साथ बैठे हों और उनके बीच सन्नाटा भारी भी न लगे बल्कि एक सुकून दे। शब्दों में अक्सर ऐसी मिलावट होती है पर मौन हमेशा सच्चा होता है। जब आप किसी के साथ बैठें तो ज़रूरी नहीं कि हर खाली जगह को शब्दों से भरा जाए। कभी कभी बस साथ होना और उस खामोशी को महसूस करना ही काफ़ी होता है, जैसे आप हमारे साथ महसूस कर रहे हैं। 107.1 FM रेनबो मुंबई पर अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ सुनते रहिए एक और बहुत खूबसूरत सा गाना।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: 5:21 का वक्त और लव यू जिंदगी में लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। तो परफेक्शन एक लफ्ज आपने सुना होगा, परफेक्शन यानी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होना, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होना, ये कभी कभी आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है और कभी कभी दिक्कत का विषय भी बन जाता है। हम अपनी जिंदगी में सब कुछ या हम सब अपनी जिंदगी की किताब के सिर्फ खूबसूरत पन्ने को देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई परफेक्ट देखने की होड़ में है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिलेशनशिप और परफेक्ट करियर, और इस चक्कर में हम अपनी उन कमियों से नफरत करने लगते हैं जो हमारे अंदर बनती हैं। दरारें होना बुरी बात नहीं, क्योंकि उन्हीं दरारों से रोशनी भी अंदर आती है। आपकी कमियां, आपके संघर्ष, आपके वो दाग जो आपको दिखते हैं, वो असली कहानी बयां करते हैं आपकी, कि आपको कहां से उठकर कहां का सफर तय करना है। और जब आप इस सफर को तय करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी जो कमियां थी वो आपको धीरे धीरे बेहतर बना रही हैं। तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसा अधूरापन है तो उसको अभी ढूंढ लीजिए, तलाश लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए, एक दिन आप जब अपनी जिंदगी को एक अपने तरीके से या अपनी राह पर ले आएंगे, तब आप कह उठेंगे लव यू जिंदगी। और जैसे ये खूबसूरत सा गाना बहुत सारी ऐसी बातें बयां करता है जो जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई, अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ।
1: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

लवली जिंदगी सुन रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। आपने ट्यून किया हुआ है 107.1 एफएम रेनबो मुंबई और जिंदगी से लबरेज कुछ बातें, और कुछ बातें ऐसी जो आपको थोड़ा और गहराई से उतरकर सोचने पर मजबूर करें। तो कुछ बातें यादों से जुड़ी हुई। घर अगर पुराना हो जाए तो उसमें सामान ज्यादा हो जाए तो हम दीपावली की सफाई में क्या करते हैं कि जो फिजूल की चीजें होती हैं उन्हें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इस दिल और दिमाग के कोने में जो हमने परसों पुरानी कड़वाहट, तलखी, किसी से कही हुई बातें, उन सबको संभाल कर रखा हुआ है, उसका क्या? वो यादें जो अब सिर्फ वजन बढ़ा रही हैं, उन्हें दिल के किसी कोने में दबाए रखने से सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। आज एक ऐसी सफाई अपने अंदर भी करिए, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दीजिए जहां वो घटा था। आज अपने को कल के मलबे से मत ढकिए। सारा वक्त आपका है, इसे हल्के होकर और इस लम्हे को एंजॉय करते हुए जी लीजिए हमारे साथ।

एक चीज होती है अकेलापन और एक चीज होती है तन्हाई, और इन दोनों में एक फर्क सा है। अक्सर लोग अकेले होने का एक अकेला होना इसको एक अभिशाप समान लेते हैं या बहुत बड़ी गलती मान लेते हैं, बहुत बड़ा गिल्ट मान लेते हैं। पर अकेले होने में और तन्हा होने में एक बहुत बारीक सा एक फर्क है। जब आप दुनिया की भीड़ से खुद को खो देते हैं वो अकेलापन है, या दुनिया की भीड़ में खुद को उस भीड़ में शामिल होने देते हैं या उसी भीड़ में आप खो जाते हैं तो वो अकेलापन है। लेकिन जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं, खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, तो वो एकांत सॉलिट्यूड बन जाता है। खुद से दोस्ती कर लेना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फिर आपको खुद को पूरा करने के लिए किसी बाहरी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खुद के लिए भी एक चाय कप बनाकर पीजिए और आप खुद से पूछिए कि कैसे हो जनाब।

निदा फाजली साहब फरमाते हैं कि बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, मिलने की चाह में कई चेहरे बदल गए। हम अक्सर चीज़ों को, लोगों को या परिस्थितियों को ज़बरदस्ती पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, भले ही वो हमें तकलीफ ही क्यों ना दें। हमें लगता है कि छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते भी तो नहीं आते। कभी कभी किसी चीज़ का छूटना या किसी का आपकी ज़िंदगी से जाना एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। हर अंत बुरा नहीं होता और कुछ अंत खूबसूरत मोड़ के लिए ज़रूरी भी होते हैं। बस उस विदाई में एक सलीका होना चाहिए और वो विदाई बिना किसी मलाल के होनी चाहिए। हालांकि ऐसी कोई विदाई हो सके जो बिना मलाल के हो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन सी बात है। लेकिन साहिर लुधियानवी साहब विदाई पर फरमाते भी हैं कि जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हम भी इस गाने को, इस गाने के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आप कहीं मत जाइए, ये खूबसूरत सी महफिल आपके हमारे दरमियान जारी रहे। सुंदर 107.1 FM रेनबो मुंबई।

6:16 का वक्त और ये वक्त है अंदाज़े बयां का और आप लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो चुके हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े बयां में अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास जब वो आप पर तारी होता है तो फिर आपको अपनी गिरफ्त में लेते ही बहुत सारी चीजों को आपसे जोड़ देता है। बहुत सारे एहसास नए से आप पर खुलते हैं और फिर जब आप उसमें डूबते ही चले जाते हैं तब आप खुद से एक सवाल करते हैं कि इतनी गहराई से मैं क्यों डूब गया, इस कदर क्यों चाहा। सैयद जिया अलवी साहब अर्ज करते हैं कि दिले बर्बाद में फिर उसकी तमन्ना क्यों है, दिले बर्बाद में फिर उसकी तमन्ना क्यों है, हर तरफ शाम है लेकिन यह उजाला क्यों है। जिसकी यादों के दिए हमने बुझा रखे हैं, फिर वही शख्स तसव्वुर में उतरता क्यों है। रोज एक बात मेरे दिल को सताती है जिया, इस कदर टूट के तुमने उसे चाहा क्यों है।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जब दिल में एक संगीत सवजने लगे, जब हर शख्स में बस एक ही शख्स दिखाई दे, जब ख्यालात एक ही शख्स के दिल में जज्ब हों और उसी से आपका दिल गुलजार रहे, तब समझिए कि आप किसी के इश्क में गिरफ्तार हैं। सैयद ज़ियालवी साहब फरमाते हैं कि तेरे तसव्वुरात से बचना है अब भी मुहाल भी, तेरे बस तसव्वुरात से बचना है अब मुहाल भी, कुछ तो है तेरी फिक्र भी कुछ तेरा ख्याल भी। ए दोस्त ताकि देख ले इश्क का ये कमाल, ए दोस्त ताकि देख ले इश्क का ये कमाल, तू ही मेरा जवाब है तू ही सवाल भी।
1: मिर्जा ने जिंदगी चाहे जैसे गुजारी हो उसकी आन बान में कभी फर्क नहीं आने दिया। एक बार दिल्ली कॉलेज में फारसी की उस्तादी के लिए टॉमसन ने उनका नाम दिया था। मिर्जा पालकी में सवार होकर पहुंचे, लेकिन जब टॉमसन उनके इस्तकबाल के लिए पालकी तक नहीं आया तो वो ये कहकर वापस चले गए, सरकार की मुलाजमत का इरादा इसलिए किया था कि इज्जत में इजाफा हो, लेकिन यहां तो सूरत ही दूसरी है।

0: मोहब्बत में कोई भी एहसास अगर दिल पर गुजरता है तो वो लंबे समय तक एक याद बनकर दिल पर वैसे ही कभी जख्म की तरह कभी मरहम की तरह याद जरूर रहता है। कुछ अशार देखिए कि सारी जफाएं सारे करम याद आ गए, जैसे भी याद आए हो हम याद आ गए। जब भी कहीं से प्यार मिला या खुशी मिली, दुनिया के रंजो गम अलम याद आ गए। लिखा था तुमने खत में के तुमने भुला दिया, क्या हादसा हुआ कि हम याद आ गए। मुद्दत हुई है बिछड़े हुए अपने आप से, देखा जो तुमने आज तुमको हम याद आ गए।
1: पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। गालिब भरपूर जिंदगी के शायर हैं, उनकी शायरी कायनात में इंसान की तलाश का सफरनामा है। इस सफरनामे का हर मंजर गालिब ने अपनी आंखों से देखा, अपने दिल से महसूस किया, अपने शऊर से कबूल किया। वो एक बड़ी विरासत के मालिक थे, लेकिन उन्होंने विरासत से ज्यादा अपनी जहानत और तजुर्बों की सदाकत पर एतमाद किया।

मोहब्बत की इंटेंसिटी जिस लिहाज की होती है, उसी लिहाज से आशिक अपने माशूक को कई कई नाम देता है, और कई बार वो उसे अलग अलग नामों से, किन किन नामों से बुलाता है। मसलन इस शेर से समझते हैं। नशूर वाइदी साहब अर्ज करते हैं कि मैं अभी किस तरह से उसे बेवफा कहूं, मैं अभी किस तरह से उनको बेवफा कहूं, मंजिल की बात है रास्ते में क्या कहूं। हुस्ने बेहिजाब पर कोई पर्दा डाल लो, हुस्ने बेहिजाब पर कोई पर्दा डाल लो, तुम उसे सनम कहो, मैं उसे खुदा कहूं।

6:57 का वक्त, और ये वक्त तो इस प्रोग्राम से विदा लेने का है, और विदा लें उससे पहले हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर लिखकर भेजा है। बशीर बद्र साहब का शेर है, राकेश माथुर साहब ने भेजा है कि चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़।

इस पर छत पर आ जाओ, मेरा शेर मुकम्मल कर दो। तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। कहीं मैं छोड़कर जाइए, ये साथियों ही बनाए रखिए।

7:10 का वक्त और ये म्यूजिक सुनते ही आपके कानों में ये म्यूजिक जब भी पड़ती होगी तो इस बात की तस्दीक हो जाती होगी आपको कि आपका अपना वक्त शुरू हो चुका है। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आपका अपना वक्त, जहां पर आपके अल्फाज हम परोसते हैं आपको वापस दुगनी मिठास परोस कर या दुगनी मिठास के साथ। तो हमारे पास बहुत सारे नाम, बहुत सारी मोहब्बतें पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और हम उन मोहब्बतों को पढ़ते पढ़ते फूले नहीं समा रहे हैं और लगातार मैसेजेस आते ही जा रहे हैं। कुछ हमारे लगातार सुनने वाले लिसनर्स जो निरंतर हमारे साथ ही मोहब्बतों भरा साथ बनाए रखते हैं, उन्हीं में से कुछ नाम और कुछ नए नाम हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ फहरिस्त इस प्रकार है कि प्रणव शिंदे साहब का हमारे पास मैसेज आ गया है, दिग्दर्शन कविता जी का मैसेज है, सुशील जी और रेणु जी का मैसेज हमारे पास आ गया है, राकेश माथुर साहब का मैसेज है, अजय साखरे साहब, विजेंद्र साहब, वैदेही जी, पंकज जी, मेहर अरोड़ा साहब, पंकज जी का तो फ़ोन भी हमारे पास आ चुका है, फिरोज साहब, संजय दर्शन जी, शुभदा जी, राजेंद्र परमार साहब, संजय पाटिल साहब, अरविंद कुलकर्णी साहब और प्रमोद राउत साहब, आप सभी के मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं और हमने बहुत ही खूबसूरत से जुगाने आपने भेजे हैं उनको क्यों कर लिया। और इसी बातचीत के दरमियान हमारे पास हीरामणि वर्मा साहब का मैसेज भी आ गया है और अरविंद कुलकर्णी साहब का दोबारा से भी मैसेज आ गया हमारे पास। तो हम बगैर देरी आपको एक बेहतरीन से गाने से जोड़ते हैं जो हमें किसने भेजा है, हाँ जी, पंकज मोहन साहब ने हमें इस गाने की फरमाइश भेजी है और इस गाने से इस प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। आप ये साथ यूं ही बनाए रखिए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो।

जी बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास, बहुत सारी मोहब्बतें हमारे पास आती जा रही हैं और उन्हीं में कुछ नए नाम भी शामिल होते चले जा रहे हैं। और हमारे पास ऐसा ही एक नया नाम शामिल हुआ है इस फहरिस्त में, विट्ठल जी का, विट्ठल मंगासे साहब का मैसेज आया है हमारे पास और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश की है और हमने उस गाने को क्यों करके भी रखा हुआ था, बहुत दिन से सुना भी नहीं था, तो इस गाने का हम भी लुत्फ लेते हैं, आप भी लीजिए और हमारे साथ ही मोहब्बतों भरा साथ ही यूँ ही बनाए रखिए। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई और अपने दिल की आवाज़ आदित्य को।

जितना वक्त बीतता जा रहा है उतना ही वक्त खूबसूरत भी होता जा रहा है, और खूबसूरत इस तरह से हो रहा है कि आपके खूबसूरत से मैसेज हमारे पास पहुंच रहे हैं और बहुत सारे खूबसूरत गानों की फरमाइश भी हम तक पहुंच रही है। और इसी सिलसिले में हम तक फरमाइश आई अजय साकरे साहब की, जिन्होंने इस खूबसूरत से गाने की फरमाइश हम तक भेजी।

फिरोज सगानफोरिया साहब ने बहुत ही तड़कता भड़कता सा गाना भेजा है हमें, और वो गाना आपको शायद डांस करने पर भी मजबूर कर देगा। और जिस मूड के गाने अभी तक चल रहे हैं उसी मूड में एक और एड ऑन करता हुआ ये गाना, और उस मूड को और खुशनुमा बनाता हुआ ये गाना।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है दीप्ति जी की। एक नया नाम हमारी फहरिस्त में शामिल हुआ और बहुत ही सारी बातें लिखी हैं आपने। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल बेहतरीन हैं। और आपने आगे खुद समझ भी लिया है कि आई होप कि आप अच्छे होंगे। जी हम बिल्कुल बेहतरीन हैं। और आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते? जी अब आपने कहा है तो आपकी ये बात सुनी जाए और अमल में लाई जाए। जो भी हमको यहाँ लाता है उस तक अगर हमारी बात पहुँचे तो हम ये चाहेंगे ऐसा ज़रूर हो। और आपने दो बहुत ही खूबसूरत से गाने भेजे हैं जिसमें पहला वाला गाना अभी हमें याद नहीं आ रहा कि कैसा है, लेकिन हमने इसीलिए चूज़ कर लिया है कि हम देखें कि ये गाना कैसा है। तो आपने फरमाइश किया है इस गाने को, इसलिए हमने सोचा कि बेहतर ही होगा। और वो गाना आपको बहुत जल्दी सुनाई पड़ना शुरू हो चुका है।

चलिए अब मूड में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही अलग और बहुत ही कनेक्टेड सा इस शहर से जुड़ा हुआ गाना। और इस गाने की फरमाइश हमको भेजिए राकेश माथुर साहब ने, और बगैर देरी हम इस गाने से आपको जोड़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके गाने सुने जा सकें।

जी, तो पिछला गाना आपने सुना राकेश माथुर साहब की फरमाइश का, और अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आज भी हमारे सामने ये दुविधा पैदा हो रही है कि हम किसका गाना कब प्ले कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे गाने छूट भी जाते हैं और बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो हम उनको बता दें कि हम 11 तारीख को फिर से आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, सेम समय रहेगा। और जिन लोगों की फरमाइश अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में प्ले नहीं हो पा रही है, वो हताश ना हो, उदास ना हो, हमसे 11 तारीख को 5 से 8 पर से मिल सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम दूसरे गाने की फरमाइश की तरफ, और ये भी बहुत खूबसूरत सा गाना है, और ये गाना भी अलग सी बातें बयां करता हुआ गाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, और अरविंद कुलकर्णी साहब ने इस गाने की फरमाइश हमको भेजी है। तो बगैर देरी इस गाने से जुड़ते हैं और इस गाने का लुत्फ लेते हैं। सुनते रहे 107.1 FM रेनबो मुंबई, आदित्य हैं आपके साथ।

7:52 का वक्त, और ये वक्त बताने का एक कारण ये भी होता है कि हमें इस वक्त आपसे इजाज़त लेनी चाहिए। और इजाज़त लें उसके पहले हम दो गाने आपको जो सुनवाने वाले हैं उनके बारे में हम बता दें। विजेंद्र जी ने हमको बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश भेजी है, और इस गाने के गीत के बोल भी जो हैं वो भी आपको सुनने चाहिए, और बहुत ही खूबसूरत से गीत हैं। और प्रणव शिंदे साहब ने बहुत सारी चीज़ें हमको एक साथ जानकारी देते हुए उससे जुड़ते हुए गाने भेजे हैं हमारे पास, तो उनका भी ये गाना आप आखिर में सुनेंगे। फिलहाल तो जो गाना सुनेंगे वो विजेंद्र जी की फरमाइश का गाना होगा। और हमारे पास तमाम सारे लोगों के मैसेजेस आए, जैसे कि हमारे पास एक नया नाम हमको आज सुनने को मिला, और आपका जो गीत आपने फरमाइश के लिए भेजा था हमारे पास वो नहीं था तो हम उसे सुना नहीं पाए, उसके लिए माजरत चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। बलकरण वर्मा जी का मैसेज हमारे पास आया, और उसमें आपने तीन नाम और जोड़ के रखे थे, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा जी और उमेश मिथिलेश वर्मा जी, आपके मैसेजेस हमारे पास पहुंच गए हैं। और मुकेश कश्यप जी हमेशा की तरह बहुत ही लंबे चौड़े नामों के साथ मैसेज करते हैं, और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही प्यारी सी फरमाइश आपकी रहती है कि किसी भी गीत में आपको शामिल कर लिया जाए।

तो आपको भी नमस्कार है हमारा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से आप मैसेज करते हैं। मुकेश कश्यप जी, शीतल कश्यप जी, सोनू जी, सुरेश जी, राजपाल जी, पंकज जी, काजल जी, सीमा जी, मानवी जी, तन्वी जी, लक्ष्य जी, सोनी जी, मोहिनी जी, ऋतिक जी और बलवीर सिंह साहब, आप सभी ने संयुक्त रूप से हमें मैसेज किया है। फिलहाल तो वक्त गुजर जाए इससे पहले हम आपको गाना सुनवाना शुरू कर दें और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप रेनबो का ये साथ यूं ही बनाए रखें। 11 तारीख को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहद

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना

के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाब

0: भी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खुश आमदी नाज़रीन हज़रात, बज़्म रंगे महफिल में आप हैं अपने दिल की आवाज़ सभी हनकवी के साथ। जी हाँ जनाब, ज़रा गर्दन झुकाकर देखेंगे जनाब तो अपने इस दिल के किसी कोने में इस नाचीज की सूरत को महफूज पाएंगे। दिल की गहराइयों के साथ एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद बज़्म रंगे महफिल में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। जी हाँ, वादे के मुताबिक आ गई हूँ स्टूडियो में आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है, जी हाँ, मौसीकी की खूबसूरत शाहकार और नाम है बज़्म रंगे महफिल। जी हाँ जनाब, तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं बज़्म रंगे महफिल का इस खूबसूरत शेर के साथ। अर्ज किया जनाब कि तुम आ गए ज़हे किस्मत तुम्हारी उम्र दराज, तुम आ गए। गौर फरमाइए, ये शेर आपको भी जाता है, यूं कहूँ कि आप ही को जाता है। जी हाँ जनाब, आप सभी को ये शेर नजर करना चाहती हूँ कि तुम आ गए ज़हे किस्मत तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा जिक्र अभी अभी किया था मैंने। जी हाँ जनाब, आपके आने पे दिल के तासुरात क्या होते हैं और मेरे तासुरात क्या होते हैं, और इस खूबसूरत महफिल की जो अंदाजे दिल है, अंदाजे बयां है, या दिल का हाल है, वो क्या बयां करता है, ये मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ज़बान से अदा कर दूंगी तो शायद इतने अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा जब इसे मैं आप मौसिकी के ज़रिए से आप तक पहुंचाऊंगी। जी हाँ, एक बार फिर से बज़्म रंगे महफिल नाम रहेगा उन खूबसूरत ओल्ड इरा, जी हाँ, एक ऐसा इरा जिसे हमने, आपने, सब ने अपने बचपन में जिया है और आज तक उसकी लज्जत उसी तरह कायम है। गैर फिल्मी जो गज़लें हैं वो तो आप रोज़ ही सुनते हैं जनाब, मेरी कोशिश रहती है कि क्यों ना कुछ पुरानी जो पेशकश हैं, जो ऐसे गीत, ऐसी गज़लें हैं जो हमारे हिंदी फिल्म सिनेमा में बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, वो आपकी नज़र किए जाएं। तो आज भी एक ऐसा ही खूबसूरत बज़्म रंगे महफिल का ये शाहकार, ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूँ आपकी खिदमत में। तो चलिए जनाब, आगाज़ रंगे महफिल करते हैं इस खूबसूरत शाहकार के साथ। उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी मेरी ये पेशकश। आप सभी की नज़र आज का ये पहला खूबसूरत तराना।

जी हाँ हुजूर, ऐसे ही नूर हो जाता है आपके अंदर दाखिल और खुशबुओं से आपकी ज़िंदगी मुअत्तर हो जाती है। किसी खुशनुमा, खुश अखलाक, खुश मिजाज इंसान के आने पर ज़िंदगी ऐसे ही खुश रंग हो जाती है जनाब, जैसे कि मेरी ज़िंदगी। जी हाँ, आप भी आ गए हैं मेरे साथ। ये आपके जो पैगामात हैं, जो जुगनों की मानिंद मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जगमगाने लगे हैं और बताने लगे हैं कि इस सफ़र में मैं तन्हा नहीं हूँ, इस सफ़र में कदम से कदम मिलाकर मेरे, आप भी मेरे संग संग चल रहे हैं, ये बताने के लिए, जताने के लिए बेहद शुक्रिया। और जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप कहाँ से, कौन हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, ये ब्यौरा भी ज़रूर दूंगी, लेकिन धीरे धीरे जनाब थोड़ा सा इंतज़ार करिए और इस खूबसूरत बज़्मे रंगे महफिल के इस प्रोग्राम को, जो कि अभी मेरे साथ आप लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, इससे अपने आप को लुत्फानंदोज़ कीजिए और ख़ूबसूरत शायरी और ख़ूबसूरत जो ये, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं आपके लिए जो चुनकर शाहकार लाई हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। खैर, चलिए बज़्मे रंगे महफिल के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ जाइए मेरे साथ इसी तरह जैसे आप जुड़े हुए हैं जनाब। रुकी जाती है नज़र हद नज़र तक जाकर, गौर करिए कि रुकी जाती है नज़र हद नज़र तक जाकर, दिल ये चाहता है जहाँ तक तुम हो वहाँ तक देखो। हुजूर, आपकी नज़रों की ये जो इर्द गिर्द पहरा है किसी हसीन शख्स का, वो भी वहीं तक महदूद हो जाता है जहाँ तक आपकी नज़रें देखना चाहती हैं। कहा जाता है कि जहाँ तक, जिस हद तक, जिस सीमा तक आप किसी इंसान को देखना चाहते हैं वहीं तक अपनी नज़रों को महदूद कर लेते हैं, यानी पाबंद कर लेते हैं, और लगता है कि बाकी सब नज़ारे आपके लिए बेमायने हैं। सिर्फ मायने रखता है आपका वो एक नज़ार और आपकी वो एक नजराना जिसे आप दिल से देखना चाहते हैं। तो चलिए जनाब, बज़्मे रंगे महफिल का एक आर्मा और ये खूबसूरत सफ़र आपके साथ इसी तरह पक पक आगे बढ़ता रहेगा। मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़ सभी नकवी। बज़्मे रंगे महफिल के इस खूबसूरत सफ़र में आज मेरे साथ ज़रूर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़िए, न जाने फिर अपनी मुलाकात कब होगी जनाब। तो फिलहाल बज़्मे रंगे महफिल का ये अगला शाहकार आपके साथ, और हाँ, आपके पैगामात मैं यहाँ देख रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ, दिल की गहराइयों से उन सभी के लिए शुक्रिया। बस कुछ ही देर बाद हम और आप होंगे आमने सामने आपके पैगामात के लिए।

जी हाँ जनाब, महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत आवाज़ और ये जो अंदाज़ है, ये अपने आप में बयां करता है कि इस खूबसूरत जो हमारे गायक रहे हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरत गज़लें अपनी खूबसूरत आवाज़ में अदा की हैं, कितने खूबसूरत गीत उन्होंने अपनी आवाज़ में हमें दिए हैं और जो हमारे लिए आज तक लाजवाब हैं। जी हाँ, अगर फिल्म हमराज़ की भी बात करें तो उसमें भी बहुत खूबसूरती के साथ महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में हमें लाजवाब शाहकार देखने के लिए मिले हैं। बज़्म रंगे महफिल का ये कारवां चल रहा है, साथ ही साथ चल रहे हैं आप भी मेरे साथ बताने के लिए कि हम सबिया सफ़र में आपके जुड़ चुके हैं। तो चलिए, अब आप जुड़ चुके हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जनाब कि यहाँ आपकी खूबसूरत बातों को शामिल कर लिया जाए। इंतज़ार हुआ ख़त्म, हम और आप आरजे सबिया जी के संग प्रोग्राम का आगाज़ एक उमदा शायरी से किया। हिचकी आ रही थी, आपका नाम लिया तो रुक गई। उफ, तुम आ गए हो, गीत सुनकर दिल खुश हो गया। ये जनाब कह रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, बेहद शुक्रिया जनाब हौसला अफजाई के लिए। सौरभ अनेजा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि सबिया ना जाने क्यों आज ना चाहते हुए भी मैं थोड़ा सा आफुर्दा यानी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, ये सोच के कि शायद अभी आपका फिलहाल अभी के लिए तो कुछ अरसे तक आज का आखिरी शो है और ना जाने आपसे लाइव शो में कब मुलाकात होगी। तो सौरभ कहते हैं कि जिंदगी चलती का नाम है और चलती का नाम गाड़ी है और शायद इसीलिए कहा गया है कि धूप छांव का ये सफर इंसान की जिंदगी में हमेशा कायम रहता है। तो बिल्कुल से मैं भी आप सभी लिसनर्स को तहे दिल से याद करूंगी और इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि फिर जल्द से

जल्द मुलाकात हो, लेकिन हाँ हमेशा कहती हूँ कि ढेर सारी मोहब्बत और ख्याल अपना भी आप रखिएगा और इंतज़ार और सब्र करिएगा, जैसे कि मैं करूँगी आप सभी लिसनर्स के लिए, कि इंशाल्लाह अगली मुलाकात जब हमारी हो तो उसी अकीदे, उसी मोहब्बत, उसी लज्जत के साथ हो जिस लज्जत के साथ आपको मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। फ़िलहाल दानिश खतौरी से हमारे साथ जुड़े हैं सभी। हाँ मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश, और आपको हमारे जो प्रोग्राम है वो पसंद आ रहा है, जिसके लिए बेहद शुक्रिया। अभी अगला जो मैसेज किया है, यानी जो ये पैगाम भेजा है, ये भेजा है हमारे एक और हमारे लिसनर हैं, देव साहब। कहाँ से हैं ये आपने मेंशन नहीं किया? अच्छा हाँ, किया है भाई, दिल्ली से आप हमारा शो सुन रहे हैं। आपका शो सुनकर उर्दू के मीठे लफ्ज़ के ख़जाने में इजाफा होना लाजमी है। शानदार है आपकी अदायगी, बेहद शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बत और इस हौसला अफजाई का। एक शेर लिख भेजा है हमारे जो हमारे लिसनर हैं मोहम्मद सरफराज आलम साहब, जो कि हार्ट दर्शना बहार अररिया बिहार से, सॉरी हाँ भाई, लिख रहे हैं जनाब के नाराज़गी भी तुमसे है, मोहब्बत भी तुमसे है, शिकायत की भी ये बात आखिर तुमसे है। ये रूठ कर महफिल में आना अच्छा तो ना लगा, मगर दिल पूछता है कि ये खामोशी किससे है। नहीं भाई, नाराज़गी की कोई बात नहीं, हम और आप बड़े जो पुराने दोस्त हैं जनाब, इस एफएम के ज़रिए से ही हमारा और आपका जो दोस्ताना है वो हुआ है यहाँ पर, तो नाराज़गी नहीं है आपसे। आपका शेर भी मैंने पूरा पढ़ा है तो बिल्कुल तो नाराज़गी नहीं होगी। गुड इवनिंग नकवी जी, प्लीज़ कोई अच्छा। लेकिन जनाब नए ज़माने की तो यहाँ जो ये कह रहे हैं जयंत पटना, नए ज़माने का कोई गीत या कोई गज़ल सुनाइए तो लीजिए जनाब। आप ये जो फरमाइश कर रहे हैं ये हमारा जो फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि एक समा बना सकूँ, एक ऐसा खूबसूरत सफ़र तैयार कर सकूँ आपके लिए, अपने लिए, जिसे आप भी पसंद करें। तो फ़िलहाल तो माफ़ी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, इंशाल्लाह देखिए अगली बार आपकी इस पसंद को ज़रूर शामिल करूँगी। चलिए फ़िलहाल आप मेरे साथ जुड़ जाइए और ये एक अगली खूबसूरत जो पेशकश है आपकी नज़र करने जा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए अपने दिल की आवाज़। आरजे सभी अनकवी के साथ बज़्म-ए-रंग-ए-महफ़िल का ये खूबसूरत सफ़र 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहब्बत क्या है, तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं? गौर करिए जनाब कि मोहब्बत क्या है, तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं? तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। जनाब ये मीठी मजबूरी भी हर किसी को जिंदगी में नसीब नहीं होती। जी हाँ, ये एक ऐसी मजबूरी है जिसे इंसान पूरी खुश अखलाकी खुश दिली से अपने लिए चुनता है। कहते हैं ना कि भाई मजबूरियाँ किसी को पसंद नहीं आती, पाबंदियाँ किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है, या यूं कहूँ कि ये एक ऐसी मोहब्बत का भरा रिश्ता है जिसमें मजबूरियाँ पाबंदियाँ सब कुछ इंसान अपनी मर्जी से किसी के लिए अपने लिए चुन लेता है। किसी की मजबूरियाँ किसी की पाबंदियाँ उसे अचानक अच्छी लगने लगती हैं, पसंद आने लगती हैं, या किसी को भी अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात बताना, किसी की ज़िंदगी में भी ज़्यादा से ज़्यादा तफसील से घुस जाना, बातें करना, ढेर सारी दिल की बातों को एक दूसरे के लिए नज़र करना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको कोई ये कह सकते हैं कि जाने ना जाने में करा रहा हो। हाँ, ये वैसा ही है जब हम सोचते हैं कि ना जाने कौन सा ऐसा जादू है या कौन सा ऐसा तिलिस्म है जो हमें उस अनजान शख्स की तरफ खींचने पे मजबूर कर रहा है। ये जो तिलिस्म है यानी जो जादू है ना जनाब, ये खुद ब खुद आपके अंदर उतरता चला जाता है और फिर आपकी रातें जागते हुए गुजर जाती हैं और दिन सोचते हुए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। इसलिए कहा गया है कि इस खूबसूरत वक्त को, जिस खूबसूरत वक्त में आप ये सब महसूस करें, इसे अपने नाम करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बड़े ही फख्र के साथ अपनी मोहब्बत के लिए ये कह उठेंगे।

हुजूर, ऐसा ही कुछ मेरी मोहब्बत के बारे में भी दिल के जज्बात हैं आप सभी के लिए, और ये शेर आप सभी की नज़र करना चाहूँगी। जी हाँ जनाब, ये जो शेर है आपके पैगामात की, आपकी मोहब्बत की नज़र है, आपकी हौसला अफजाई की नज़र है जो आप मुझ तक पहुँचा रहे हैं। गौर करिए जनाब कि ये हद है अकीदत की, मोहब्बत की, वफा की। ये हद है अकीदत की, मोहब्बत की, वफा की, लिख लिख के तेरा नाम कलम चूम रहे हैं। जी हाँ, आप जो पैगाम जो आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं, ये भी दिल पे यही मसरत का आलम पेश कर रहे हैं। तो लीजिए जनाब, आप कुछ और पैगाम जो मुझ तक पहुंचे हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, उनको भी शामिल कर लेते हैं इस कारवां में, इस सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम सबीहा। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। ज़िंदगी कुछ याद आती है, गम में मुस्कुराने की चाहत रखती है, आपका सॉन्ग सेलेक्शन बहुत लाजवाब है, बहुत शुक्रिया। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबिया मैम, इन दिनों आप जितनी भी बार आईं, अलग अलग तरह के शोज आपने पेश किए, जैसे कि म्यूजिक, मस्ती,

0: बज़्मे रंगे महफिल आपकी याद आती रही, लेकिन हर शोज में जो आपका सॉन्ग सिलेक्शन था वो बाकमाल था, और इसी के साथ आपने हम सबको मोटिवेट भी किया, यानी हौसला अफजाई की, वो भी बहुत हमारे लिए कामयाब रही। चलिए, मेरे किसी भी किए गए काम से आप तक कोई अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज पहुँचा, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। हमारे साथ एक बार फिर से ममता जुड़ी हैं। मैम, एक सवाल पूछना था आपसे, क्या रेडियो जॉकी जहां आप काम करते हैं, मतलब वहां आपको लिमिटेड शोज दिए जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपका शो अब कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं। तो ममता, आपकी जानकारी, आपकी इन्फो, आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि जी हां, बिल्कुल आपका अंदाज़ा सही था, यहां हमें एक लिमिटेड प्रोग्राम ही दिए जाते हैं, और अब मेरा जो प्रोग्राम है उसकी जो मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने कहा। और ये भी है कि मैं आउट ऑफ टाउन रहती हूँ, ख़ास तौर पर यहाँ प्रोग्राम करने आती हूँ आप सबकी मोहब्बत के लिए, तो बस अब जो मेरा सफ़र है वो फ़िलहाल तो ख़त्म हो गया। देखिए अब कितने अरसे बाद मुलाकात होती है, लेकिन आपने पूछा, आपने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझा, इसके लिए बेहद शुक्रिया ममता आपका। मैडम, ग्रेट सॉन्ग सिलेक्शन है आपका, और एक अच्छी रेडियो की यही पहचान, रेडियो जॉकी की यही पहचान है कि उनका सॉन्ग सिलेक्शन कमाल का होता है, और आपका सॉन्ग सिलेक्शन बता रहा है कि आप जो भी अब तक सॉन्ग्स या गज़ल आप प्ले कर रही हैं वो बेहतरीन है, काबिले तारीफ है। ये फिर से ममता ने मेरी हौसला अफजाई की है, बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम और गीत सुनकर आँखों से नींद गायब हो गई है, ये फरमा रहे हैं कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी साहब और इनका पूरा जो परिवार, यानी जो उनकी पूरी फैमिली है। नमस्कार, आदाब, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है ही, सॉन्ग सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है, ये कह रहे हैं मेरठ से वीरू बख्शी साहब। बेहद शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मैंने बहुत बार सुना है फिल्म रेनबो पर, आपका याद नहीं आ रहा, आप साइमा हैं क्या? प्रदीप सलूजा जी कह रहे हैं, संगीता सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से। नहीं जी, जनाब आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूँ, साइमा तो नहीं हूँ लेकिन हुई ऐसे, मेरा नाम है सबीहा नकवी। जी हाँ, मैं काफ़ी अरसे से एफएम रेनबो पर एज ए रेडियो जॉकी काम कर रही हूँ, और आप पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में, और मुझे तो काफ़ी अरसा हुआ लेकिन आप पहली बार सुने, उसके लिए शुक्रिया। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, नाइस सेलेक्शंस, गज़ल्स और सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश भल्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभ रात्रि मैडम जी। अरे आपने अभी से शुभ रात्रि कर दी, अभी तो सफ़र आधा ही हुआ है। चलिए, ये कंकड़खेड़ा से हमारे साथ राजेश भल्ला जो कि एक एडवोकेट हैं पेशे से, वो जुड़े हैं हमारे साथ। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रेगुलर लिसनर प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से, ये एक शायरी मुझ तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस शायरी को मैं ज़रूर पढ़ूंगी प्रेमचंद जी, थोड़ा सा इंतज़ार करिए क्योंकि आपकी खूबसूरत शायरी पूरी आप तक पहुँचे ये भी ज़रूरी है। चलिए एक और खूबसूरत शाहकार, उसके बाद अपनी मुलाकात तय है जनाब।
1: तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग।
0: जी हाँ हुजूर, ये सभी लिसनर्स को मैं देना चाहती हूँ अपनी तौर पे अपना नजराना, ये खूबसूरत शाहकार में जो लफ्ज़ों की अदायगी है वो मेरे दिल के जज्बात हैं आप तक, ये खूबसूरत शाहकार मैं अपने दिल के जज्बात के तौर पर पहुँचा रही हूँ।

जी हाँ हुजूर, यही तासुरात और यही हालात मेरे भी दिल के हैं। मैं तो यही चाहती हूँ जनाब कि आपको मेरी ढेर सारी दुआएं लग जाएं और आप भी हमेशा इसी तरह मुस्कुराते हुए नज़र आएं। जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे इसी तरह मुस्कुराते हुए खुशबाग खुश अखलाक नज़र आएं। आप जा रहे हो रेनबो से, ये कह रहे हैं कौन? जी हाँ, ये कह रहे हैं देव साहब, ये रास्तों की चादर भी समेटते चलो, मोड़ों की गठर भी बांध लो, सफर बीच में छोड़कर जा रहे हो, यादों के थैले मत छोड़ जाना, सब साथ लेकर जाना सिवाय तन्हाई की जो तुम्हारी यादों का सबब बनेंगी। पता नहीं ये शायरी है या इन्होंने अपने दिल के जो हालात हैं, जज्बात हैं, वो बयां किए हैं, लेकिन जो भी बयां किया है बहुत खूब। और अब प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से हमारे साथ जो जुड़े हैं उनकी भी शायरी को ज़ेर नज़र कर देती हूँ। आपके उजड़े शहर में उल्फत मकान ढूंढता हूँ, नाम वफा का गुमशुदा निशान ढूंढता हूँ, और नादान मैं भी कितना हूँ कि तू देख मेरे यार, जो इन पत्थरों की बस्तियों में आज भी इंसान ढूंढता हूँ। बहुत खूब। रितु बत्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, गोपाल पार्क में रहती हूँ, आपके सॉन्ग सिलेक्शन बहुत पसंद आते हैं, घर के सारे काम निपटा कर जल्दी से आपका शो सुनती हूँ, अच्छी फीलिंग्स आती हैं, थैंक यू सो मच। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी अरसे के लिए जा रही हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप जल्दी आइएगा, दुआ है आपके लिए, बेहद शुक्रिया, मेरी भी नेक दुआएं आपके साथ हैं जनाब।

और देखते देखते देखिए हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और जयंत पटना जी जो कह रहे थे कि आज के ज़माने के कुछ पेशकश की जाए, वो भी कह रहे हैं वाह वाह मज़ा आ गया, आपने भी अच्छी रंगे महफिल जमा दी। देखिए ऐसा ही होता है जनाब, जब किसी चीज़ को आप लगातार दिल से महसूस करते हैं तो वो भी धीरे धीरे पसंद आने ही लगती है। चलिए दोस्तों, कुछ और पैगाम के साथ होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल तो मेरा दिल पुकार पुकार कर आपको कह रहा है कि लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए बज़्म रंगे महफिल के साथ। बस कुछ ही देर में एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास आपके साथ। फिलहाल बज़्म रंगे महफिल का ये अगला शहर आपके लिए।

तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। जी हाँ जनाब, जिंदगी कम पड़ जाती है जब किसी के साथ गुजारे गए अनगिनत लम्हात किसी एक लम्हे में सिमट कर आपके दामन में आ गिर जाते हैं। ये बिल्कुल से इस वक्त यही जज्बात मेरे दिल में भी हैं और आपके दिल में भी होंगे, या आपके पैगामात आपके मैसेजेस मुझे बता रहे हैं। और कुछ लोग तो बड़े इमोशनल मैसेज भी कर जा रहे हैं, आपने अपना नाम तो नहीं बताया मुझे, तुसी ना जाओ सबीहा, ये कौन फरमा रहे हैं मुझे नहीं पता। अगला जो पैगाम है वो ले लेती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास जितना भी वक्त है जाते जाते कम से कम आपके जो पैगामात हैं वो ज़रूर पढ़ती जाऊँ, इससे मुझे भी खुशी होगी और कहीं ना कहीं आप तो तवक्कात में हैं ही कि आपके मैसेज ज़रूर ऑन एयर कर लिए जाएं। मैं नवलू वरक मलपड़ गोवा से, अच्छा एफएम रेनबो का रेगुलर लिसनर हूँ, इस वक्त सुन रहा हूँ ये प्रोग्राम, मुझे बहुत दुख भी दे रहा है, अच्छा तो लग ही रहा है। लास्ट प्रोग्राम फिर ना जाने कब मुलाकात होगी, आपने ये बताया। सभी प्लेलिस्ट आपकी बहुत अच्छी थी, आप तुरंत हमारा मैसेज पढ़ लेते हो, ये बात भी काबिल तारीफ़ है, बेहद शुक्रिया। और ये तो मेरा फ़र्ज़ है जनाब, जब आप वक्त निकाल कर हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको शामिल कर सकें और आपकी बातों को महसूस भी कर सकें और आपकी बातों को आप तक पहुँचा भी सकें। चलिए, हमारे साथ जुड़ी हैं पुष्पा जी जो कि अहमदाबाद से हैं और विकास की मदर हैं। ये कह रही हैं, सभी आप जा रही हो, सुनकर तकलीफ़ हो रही है, लेकिन नेक दुआओं के साथ आपको रुखसत करना चाहेंगे, बेहद शुक्रिया। आपकी यही दुआओं की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इन्हीं दुआओं के साए में मैं अपना जो ये सफ़र है आपके साथ तय कर रही हूँ। और एक तो कोई पूछ रहे हैं कि आप रिटायर हो रही हो क्या? नहीं भाई, रिटायर्ड नहीं हो रही हूँ फिलहाल, मेरे जो शोज़ हैं, ये बात ममता ने भी पूछी है और वो कह रही है कि मैंने मिस कर दिया कि आपने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया। हाँ ममता, हमें यहाँ पे जो है एक लिमिटेड शोज़ मिलते हैं, यानी एक हमारी मियाद होती है

कि हमें उतने ही शोज मिलते हैं और मेरा आज ये लास्ट शो था। अब मैं आउट ऑफ टाउन यानी इस शहर में नहीं रहती, बाहर शिफ्ट हो गई हूँ, स्पेशली प्रोग्राम करने आती हूँ आप सभी की मोहब्बत के लिए। तो बस वो मेरा वक्त फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर से वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे। और बिल्कुल से आपकी जो ये बातें हैं हमेशा याद आएंगी। दानिश एक बार फिर से खतौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये हैं हमारे साथ जी। आपका मेल दूसरी बार सुन रहा हूँ, वैसे आप कहाँ से हो और कब आना होगा, हम सब आपकी वेट करेंगे। फिर से प्रदीप सलूजा जी कह रहे हैं, संगीता सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। हाँ तो भाई कब आना होगा और कब मुलाकात होगी ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, फिलहाल तो बस आपसे यही वायदा कर सकती हूँ जनाब कि जाने से पहले कहूँगी आपसे वही एक ख़ास बात कि अपना रखिएगा एकदम खासम खास ख्याल। अब अपनी अगली मुलाकात कब हो कहाँ हो ये बताना आपसे मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन इस वादे के साथ कि जब तक मैं आऊँगी आपको बहुत सारा ख्याल अपना रखना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना रखिएगा एकदम खासम खास ख्याल, क्योंकि आप ही किसी के लिए बेहद ख़ास। ढेर सारी दुआएँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी नेक विशेस के साथ आप सभी को कहना चाहूँगी मैं। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह जल्दी होगी मुलाकात, लेकिन कब कहाँ ये नहीं बता सकती, लेकिन बस आपके बेइंतहा प्यार के लिए, तवज्जो के लिए, आपके पैगामात के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कोशिश की है सारे पैगामात पढ़ने की, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तहे दिल से माजरत चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल बस ये सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है और बस मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि आप अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे, अपनी मोहब्बत इसी तरह कायम रखेंगे, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सभी आरजेस के लिए। बस तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। जाते जाते बज़्म रंगे महफिल का ये आखिरी जो पेशकश है आप तक पहुंचाना चाहूँगी, बेहद दुआओं के साथ आखिरी बार आप सभी को खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालय शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं जीरो आर शो की तरफ।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गप।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना

करना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच

आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य में लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्मार्ट डिजिटल गाइड के रूप में NZP साथी ऐप लॉन्च किया और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाकर चिड़ियाघर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया में उलानबटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो सुहानी रात में आपका स्वागत है।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड

0: ट्यून्स तक।
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और

यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा में श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि बढ़ती मांग के बावजूद नागालैंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। निर्बाध आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने बताया कि पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम नागराज को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार हैं। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। आइए सुने भूलने ना भुलाए में कुछ यादगार नगमे।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भूकंप भूटान में आज देर रात 5.8 तीव्रता

का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी के नुकसान या जानमाल के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोवोली को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फिलिप चैट्रियर कोर्ट पर खेले गए 4:20 के मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी एफएम रेनबो। मिडनाइट मेलोडीज में आपका स्वागत है।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिवसीय जोन 2nd सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन हरियाणा विधानसभा कर रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भूटान में देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आई भूकंप

के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी इसके झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय पहलवानों ने मंगोलिया में चल रहे उलानबतार ओपन 2026 में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। आइए चलते हैं सारे गामा के सफर पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आय हाय,
2: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,

0: जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जिन
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।